एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, आज रविवार है। तदनुसार 24 मई 2026 इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं सुप्रभात।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सू मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान

0: और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकारी विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय है सर्व मंगल मांगल्य।
2: शक्ति के 9 रूपों की आराधना करने वाले 700 श्लोकों का ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। इसके 700 श्लोकों में एक मां दुर्गा के नारायणी स्वरूप का है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी भगवान नारायण अर्थात श्री विष्णु की शक्ति का सात्विक स्वरूप है। शक्ति का तामस और सात्विक स्वरूप वंदन अर्चन सब पुरुषार्थों का हेतु है। इसीलिए पंचांग के वर्ष में 9 दिवस रात्रि मिलाकर चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र उत्सव मनाकर गृहस्थ देवी दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की उपासना करते हैं। मांगल्य जीवन की अभिलाषा है। इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए

सनातन धर्म ही नवरात्र में तप और साधना करके मांगल्य को आमंत्रित करने का अनुष्ठान करते हैं। गृहस्थ आश्रम चार आश्रमों का कारक है, इसलिए गृहस्थ को वर्ष में दो बार नवरात्र उत्सव मनाकर नारायणी अर्थात पालक शक्ति को अर्जित करना होता है ताकि सबका मांगल्य हो सके। यही सीख महर्षि मेधा ने राजा सुरथ को देते हुए कहा था, तामुपहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता सैव नाम भोग स्वर्गाप वर्गदा, अर्थात आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण लीजिए, वे आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग स्वर्ग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करती हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, विषय था सर्व मंगल मांगल्य। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

हरि हरन के स्वर में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी। वंदना कार्यक्रम में अप्रस्तुत है अनुराधा पौड़वाल के स्वर में मीराबाई की ये भक्ति रचना।

भक्ति संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से वंदना कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं वंदना कार्यक्रम का अगला भजन।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार है सतीश भाटिया।
2: अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं प्रसारण समय।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती नी बात। छह बजकर पचास मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत बंसीलाल बबली देवी व साथियों की आवाज में। सात बजकर बीस मिनट पर समय रहेगा कार्यक्रम वातायन का। आपके पसंदीदा कार्यक्रम कुछ जलसे का समय रहेगा प्रातः आठ बजकर पंद्रह मिनट पर।

प्रातः 8 बजे आप सुन सकेंगे समाचार प्रभात हमारी दिल्ली केंद्र से। वहीं आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रातः 9 बजे जयपुर केंद्र से। प्रातः 11 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सदाबहार नगमों का कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे 11:30 पर।

सायंकालीन सभा में समाचारों का प्रसारण समय कुछ यूं रहेगा। 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से, समाचार संध्या 8:45 पर दिल्ली केंद्र से, वहीं आप सुनेंगे हिंदी में समाचार रात 11 बजे दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं प्रसारण समय। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती निबाध।

मान जी भाई मेरा भाई, किसान भाइयों आपने सब जाना कि आपकी अगली जो फसलें हैं इन्हीं तैयारियों से समय है, यानी जो प्री मानसून तैयारी है ये आपड़े करी सके आना उपयुक्त और सही समय है। तो मानसून पहले अगर किसान भाई सही तैयारी कर लेगा तो इनमें फसल उत्पादन अच्छा मिलेगा और इन्हीं खेती संबंधित या कृषि संबंधित जो लागत है ये भी कम था। तो आना हारू किसान भाइयों सप्ते की पहले अपन ने खेतर ने तैयारी करनी आवश्यक है। खेतर ने तैयारी अगर अपने बात करें तो अपने सप्ते की पहले खेतर ने गहरी जुताई कर ली सुबह, क्योंकि आज से गर्मी ना दौड़ा है आड़ में आ गहरी से जुताई है इन्हें देखिए अपने खेतर ने मिट्टी में से छिपेला था का कीट है जो अपनी फसल ने नुकसान पहुंचाड़े उत्पादन ने प्रभावित करे आ कीट और जो खरपतवार है जो अनावश्यक रूप थे कि उगी जाए ने फसल ने नुकसान पहुंचा रहे। तो आज एक कीट और जो खरपतवार है ये आना गर्मी ने गहरी जुताई थी कि नष्ट थी जाएगा और गहरी जुताई थी कि एक और लाभ है किसान भाइयों के आने थी कि बारिश में पानी है ये भी जमीन में अच्छी तरह की समाई जाएगा, जमीन नहीं रहेगा तो खेतर में नमी जो है ये बड़ी नहीं रहेगा और आज ये नमी है ये अपनी फसल ने उगाड़वा में मोटी करवा में बड़वा डालवा में और उत्पादन अच्छू आलवा में सहायक साबित थेगा। तो आ काम अपने कर लेव जुए आने हाथे जो बीज नु चयन है और जो बीजोपचार है आ करो भी बहुत आवश्यक है। तो आने वाले अपने किसान भाई प्रामाणिक और जो उन्नत किस्म के बीज है अपने काम में ले हुए हैं और जे भी बीज अपन ल तो

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत, जो अभी ही संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वातायन।
1: सड़क छाप सड़क, महाकवि निराला की काव्य नायिका एक सदी से इलाहाबाद की किसी सड़क पर पत्थर तोड़ रही है, पर सड़क छाप सड़क अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस सड़क के नाम पर न जाने कितना बजट उद्रस्त हो चुका, पर ये डेढ़ पसली की सड़क ढीठ की तरह विकास की राह का रोड़ा बने खड़ी है। महाकवि की कविता पढ़ते पढ़ते हम अपने शहर की सड़कों में कहीं खो जाते हैं। शायर कृष्ण बिहारी नूर ने ठीक ही कहा है, हम तो गजल सुनाकर खड़े रहे, सब अपने अपने चाहने वालों की भीड़ में खो गए। तो हर शख्स को अपना शहर याद आया, सड़कें तो खुद बखुद जख्मों की यादों में चली आई। पांव के छालों को भूलकर जो सड़क के साथ सहानुभूति रखते थे, उनके लिए शोध का विषय था कि आखिर सड़क छाप ही क्यों रही सड़क। इन परोपकारी सड़कों पर ठोकरें और दुर्घटनाएं

नहीं होती तो हड्डी रोग विशेषज्ञ किस पर प्लास्टर चढ़ाते, फिजियोथेरेपिस्ट दिन रात किसकी टांग खींचकर अपना पेट पालते। तो सड़क छाप सड़क के अनेक आभूषण हैं, अत कचरे डिवाइडर, खस्ताहाल स्पीड ब्रेकर, वीर गति को प्राप्त हमारी सड़क के बदन पर अनेकानेक गड्ढे, जैसे महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे हों। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी आवाज उठाने का हक है। सड़क छाप सड़क भी संसद तक पहुंचना चाहती है, पर कविवर धुमिल ने उसे बताया कि संसद से सड़क तक, अर्थात एक दिन संसद खुद उनके पास सड़क तक आ जाएगी, तब से हमारी सड़क शबरी की तरह संसद की प्रतीक्षा कर रही है। निराला की नायिका निरंतर पत्थर तोड़ रही है। धुमिल के शब्द तारकोल के गर्म ढोल से आग के साथ धुआं उगल रहे हैं, एक अदद सही सड़क के लिए। बरसात में बड़ी सड़क पर हमारी अनुभवी और अभ्यस्त आंखें अनुमान लगाती हैं कि सड़क के शरीर पर किस टुकड़े में पांव रखने लायक डामर बचा हुआ है, और हम निर्मल वर्मा की तरह उस एक चिथड़ा सुख के सहारे गली की वैतरणी पार कर जाते हैं। कबर खोदने वाला तो मृतक को जन्नत नशी कर रवाना होता है, पर सड़क खोदने वाले तो उसकी बोटी बोटी क्षत विक्षत करते रहते हैं। कभी नल वाले सड़क तोड़ रहे हैं, कभी गैस लाइन वाले, कभी गटर पाइप वाले, तो कभी केवल केबल लाइन वाले। एक बार सड़क बनते ही दूसरा विभाग सड़क तोड़ने के लिए टूट पड़ता है। 12 मास 32 घड़ी खुद ही सड़क देखकर लगता है जैसे सड़क न हुई, गरीब की जोरू हो गई, जो यतीम औरत की तरह एक के बाद एक लगातार अनेक प्रसव कर रही है। सड़क की निरंतर प्रसव पीड़ा टेंडरों वेंडरों के लिए महज एक खेल है। वो निरंतर सड़कें तोड़कर विध्वंसों पर निर्माणों के गीत लिखना चाहते हैं। तो देश की प्रगति के लिए सड़क को सड़क छाप सोच से बाहर लाना होगा। सड़क को बड़े सपने देखने होंगे, पगडंडी की सोच के बजाय राजमार्ग पर नृत्य करने का अभ्यास करना होगा। सड़क को भी फोकटिया राहगीरों को आंख दिखानी होगी। टोल वसूली का स्तर कायम कर एरे गेरे नथू खेरों से लंबी सड़क की तरह डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी। कुल मिलाकर सड़क को कड़क होने का हुनर सीखना होगा। व्यंग्य हार का ठीकरा, हे राजन, जीत का सेहरा बंधवाने को तो सभी आगे हो रहे थे, पर अब हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कोई सिर सामने नहीं आ रहा है। ठीकरे से उठ रही आंच से मेरा हाथ जल रहा है, बताइए इसे कहां फोड़ा जाए। यह कहकर बेताल राजा विक्रम की पीठ से उछलकर पेड़ की टहनी से लटक गया। राजा विक्रम की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए यह मामला अपने थिंक टैंक यानी कि किचन कैबिनेट को सरका दिया, पर वो थिंक टैंक के राग दरबारियों की बौद्धिक क्षमताओं को लेकर विचार में पड़ गए, क्योंकि विचारकों की सर्वे रिपोर्टों में कहीं भी राजा के पराभव का कोई संकेत नहीं था। राग दरबारियों ने उन्हें एक पांव पर न जाने कितने कितने निरर्थक डांस करवाए।
राजा को इस बात का

शागिर्द फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम प्यार का मौसम, मजरूह सुल्तानपुरी, आर डी बर्मन।

0: इसी के साथ अब आज का हम ही रहे प्यार के कार्यक्रम खत्म होता है। प्रतीक्षा समाचारों की।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 8 बज रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता।

0: अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण

0: कराधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस

0: श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरत नाज।
1: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नव भारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस वक्त सुबह के 8:15 हुए हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से का।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।

0: नाम से नहीं।
1: RBI कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: दोस्तों सोचिए, अगर जिंदगी में सिर्फ चिलचिलाती धूप हो तो हम थक कर जाएंगे ना। कुदरत ने कितना खूबसूरत निजाम बनाया है। एक तरफ सूरज की रोशनी है तो दूसरी तरफ घने पेड़ों का साया है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। मुश्किलें अगर धूप बनकर आती है तो परिवार का साथ, दोस्तों की हंसी और अपनों की मोहब्बत हमारे लिए ठंडी छांव का साया बन जाती है।

दोस्तों, जिंदगी में रोशनी की तरफ देखेंगे तो डर का साया हमेशा आपके पीछे होगा, लेकिन अगर आप रोशनी से मुंह मोड़ लेंगे तो वही साया आपको डराने लगेगा। अपनी नजर हमेशा उम्मीद, हौसले और रोशनी पर रखिए, मुश्किलें खुद ब खुद आपके पीछे चली जाएंगी।

दोस्तों, अपनी परछाई यानी अपने साए से एक बात सीखिए, वो हर मोड़ पर, हर रास्ते पर आपके साथ चलती है बिना कोई शिकायत किए। आज आपको भी खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना है, खुद का साया बनना है, जो कभी खुद का साथ ना छोड़े, हार ना माने। जाते जाते दुआ करते हैं कि खुशियों का साथ हमेशा आप पर बना रहे। मुस्कुराते रहिए और अपने दिन को शानदार बनाइए। इसी के साथ दीजिए इजाजत आपकी दोस्त अस्मा खान को, फिर मिलने के वादे के साथ। तब तक के लिए अलविदा। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत

और अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती को लेकर सभी सरकारी विभागों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इनमें सरकारी खर्चों में कमी लाने, डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र में सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या सीमित करने, राजकीय खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी तय किया गया है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई व्हीकल्स में बदला जाएगा। संविदा वाहनों में भी ई व्हीकल्स को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राज्यभर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा एक ही दिशा में आने जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पूलिंग अपनाने और तात्कालिक रूप से निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करने को कहा गया है। ये खर्च नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर लागू होंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का

0: बनने की अपार संभावनाएं हैं। श्री वैष्णव कल जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने भिवाड़ी में खुले प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करीब 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस क्लस्टर के जरिए अब तक 20 कंपनियों से 1200 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजनाएं आकर्षित की जा चुकी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी इलाके को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया जा चुका है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार की स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत देश की सीमाओं को अवैध बनाने की योजना का स्वागत किया है। श्री शेखावत कल बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और किसी भी तरह की घुसपैठ की आशंका समाप्त हो जाएगी।
1: आने वाले 3 वर्षों में भारत की सीमाएं अवैध हो जाएंगी। हम भारत की सीमाओं को अवैध बनाने के लिए सभी उन्नत टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए जहां सीमा पर सीमा की तारबंदी को और अधिक सुदृढ़ करना है उसे सुदृढ़ करते हुए भारत की सीमाएं अवैध बने और भारत में एक भी व्यक्ति घुसपैठिए के रूप में प्रवेश न कर सके इसको सुनिश्चित करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करना प्रारंभ किया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीकानेर से, हमारे राजस्थान से, क्योंकि भारत में जो पाकिस्तान के साथ में हम सीमा साझा करते हैं उसकी 1/3 से ज्यादा सीमा जो है वह राजस्थान में है, तो राजस्थान के बॉर्डर पर उनका आना राजस्थान की सीमा की सुरक्षा के लिए और राजस्थान की सीमा के बदलते हुए परिदृश्य में भविष्य में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
0: श्री शेखावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे की तैयारियों का भी जायजा लिया। श्री शाह का कल रात बीकानेर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 26 मई को सांचू बॉर्डर चौकी का निरीक्षण कर जवानों से संवाद करेंगे। वे सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को हर आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। श्री खर्रा कल अजमेर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करना निर्वाचन आयोग का काम है।
2: हम तो तैयार हैं, राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनाव कराने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग जब भी उनकी समझेगा और सरकार से उनको जो मदद की आवश्यकता हो सरकार को मदद देने को तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग जब चाहे चुनाव की तैयारी करे।
0: गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में जारी आदेश में कहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव अब और टाले नहीं जा सकते। अदालत ने सरकार से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 जुलाई तक की समय सीमा तय की है। साथ ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और परिसीमन तथा मतदाता पुनरीक्षण का काम 20 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्कर घाटी में बढ़ते सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए अजमेर जिला कलेक्टर को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घाटी के दोनों तरफ हाइट गेज लगाने और बड़े वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने को कहा। श्री देवनानी ने कहा कि पुष्कर लोगों की आस्था का प्रमुख केन्द्र है, यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में घाटी क्षेत्र में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। श्री सिंह ने कल महाराष्ट्र के सावली विहीर औद्योगिक क्षेत्र में तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है और आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा।
3: हमने यह समझा सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया। पॉजिटिव

0: ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट आई, हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। हालांकि कल पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ हिस्सों में आंधी बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली और हल्की बरसात हुई। वहीं जैसलमेर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। बाड़मेर, बीकानेर और फलौदी में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब मापा गया। 44 डिग्री पारे के साथ पिलानी, चित्तौड़गढ़ और कोटा भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। राज्य के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म हवाओं का प्रकोप अधिक है। सरहदी जिलों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक हीटवेव की प्रबल संभावना है। पश्चिमी जिलों में तेज लू और पूर्वी तथा उत्तरी जिलों में हीटवेव के साथ गर्म रातों का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया गया है। इस बीच कल से नौतपा शुरू हो रहा है, ये 2 जून तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों सूरज सबसे ज्यादा तपिश पृथ्वी पर डालता है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अवैध बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह व साथियों की आवाज में गाए कुछ चुनिंदा गजलें।

0: इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: अनमोल खजाना
2: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
1: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
2: डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे के एल

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरूह सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

0: मुझे।
1: दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और एआर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

0: जो न कह सका।
1: 24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: मिलती है धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफी छोटा तरफ से काम कर रहा हूँ और ये ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि
2: Correct.
3: इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताएं।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे वाह,
3: मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है। और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश में सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। केशव पटरिया के गाना,

0: उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन भी था और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था, चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहां पे बैठते थे और फिर वो वहां पे कुछ गाने गाते थे एक दो घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठे थे और कई दफा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज्यादा बैठते हैं, आते नहीं पढ़ते नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हजार रुपए उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
1: अरे वाह वाह।
0: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो फिर वो हमारा घर जैसे बगल में था तो हमारे घर में रखते थे हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम दो दो तीन तीन घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है जिनमें
1: मेरे पिताजी चबूतरे में,
0: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूंगा मेरे पिताजी भी किसान है, मेरी माँ भी किसान है और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
1: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
0: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, तो बसारी के आगे है पहरा। बहुत ही छोटा सा गाँव है सर।
1: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
0: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक, जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जी जाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
1: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
0: उसपे ऐसे कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे लाइक भागे होती थी।
1: हाँ।
0: तो उसी तरह से कि कहां ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहां ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे कहां ले आए।
1: उपटा लगत उंगरिया, क्या बात है,
0: कहां ले आए राजा कुमारिया में,
1: मतलब बुंदेलखंड
0: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए। ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, पलगत चुनरिया मेरे कहां ले आए, कहां ले आए राजा पहाड़िया मेरे कहां ले आए। सो वही है लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं।
1: तो मजा आ गया,
0: बहुत ही मजा आ गया, तो बहुत मजा। तो यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ।
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग एक महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा।
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
1: अरे और
0: मैं 9th क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे।
1: हाँ।
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे लाइक,
1: तो बुंदेली में था ये?
0: हाँ, बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो पहला नाटक था मेरा।
1: हाँ।
0: तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया और मैंने अभी आपसे बात भी किया। इस तरह का जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग एक

0: दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख
1: हाँ
0: सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूं। तो फिर ऐसी शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ कि खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई। खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाथ विद्यालय एनएसडी की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफी बड़े एक्टर
1: हैं,
0: जो पन्ना के ही हैं। तो वो एनएसडी से पास होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे। हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, फाइव स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला दो दो किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चल रही है, क्योंकि वहां पे 1 महीने रहना है। तो शिल्प ग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें कहीं देखा है। तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के आया।
1: इश्तियाक भाई की खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मुझे ये करना है, अब मैं कहां सीखूं, तो उन्होंने बोला था कि मैं एनएसडी से पढ़ा हुआ हूं, तुम भी एनएसडी जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके एनएसडी पहुंचना है,
1: डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख गया अभी मुझे पहुंचना है एनएसडी। तो फिर वहां
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी,
1: यहां एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी जी,
1: तो जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहाँ बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम, गाना सुनता तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना, ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए, तो ये कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे।
1: बिल्कुल, वो एक जहन में बसे होते हैं और ये उस दौर की याद लेके।
0: जी जी जी, हमने बहुत देखा है फिल्म को, बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: क्या
0: जो भी सीडी पे जो भी मिलता था देखते, सर जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह, ये गाना सुनते हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही है और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है जो तब तक NSD में है और तब तक बम्बई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है।
1: जी जी।
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहां मुझे पढ़ना है,
0: तो मंडी हाउस चले।
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उसमें मेट्रो बन रही थी तो मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था, मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा और मैं NSD मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है, बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने कहा अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊंगा, मैंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 26-26 फोन हुआ करता था,
0: वो छोटा वाला
1: फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है, रिकॉर्ड कर दो, मेरे पास में इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो या बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
0: अरे गजब।
1: और तुम अनुशासित हो,
0: 1 मिनट में सब
1: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा, तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है, मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो कॉलेज में इस शहर में था,
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा, और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर सत्यनारायण नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए, और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
0: अच्छा
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा, अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो आपको, कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हेमंत भाई,
0: बिल्कुल
1: आप जानते होंगे बहुत बड़े कवि,
0: बिल्कुल बिल्कुल विहान ग्रुप,
1: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर है वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहां से निकलना है प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलखनंदन सिन्हा जी अलग दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर

0: वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को। शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है। मैं सोच रहा हूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूं। अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
1: बिल्कुल।
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपको फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा और फिर एक बंदा
1: रोशनपुरा चौराहे,
0: हाँ, एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा। वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने उनके पैर छुए, वो नहीं बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग के घर में, और हम बैठे हुए हैं और एक घंटा हो गया।
1: पहले हेमंत आया,
0: हेमंत दादा आए पहले और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने आना गाते हो सकता है तुम्हें म्यूजिक के बंदे को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहनी हुई है, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, एक घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं, और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं बंदा पढ़ ही रहा है आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये उन्होंने बोला कि इसको लेके आ गए कौन है मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हेरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूं, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल से साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेक्टरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूं, तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा। तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई उस महफिल में, सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, ओ पुत्रा और पुतरिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने। घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने,
1: वाह वाह
0: मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने, दद्दा मोखा मिला जाने।
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, उसके दोस्त है
1: बिल्कुल।

0: या बूठा गिद्दा फद्दा बन के गजे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने।
1: वाह वाह,
0: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़ी आहलाने, गद्दा मुखा मेला जाने।
1: वाह वाह,
0: आखिरी बंदे की दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला। फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई। कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने, गद्दा मुखा मेला जाने।
1: कहते हैं देवेंद्र,
0: क्या कहते हैं उस समय ये बुंदेलखंडी कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी, और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले नहीं, और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस खाना हो गया,
0: खाना हो गया, और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चराइयां बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे, जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना, और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे करने को मिला, मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, यार ये मैं समझ नहीं आता मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे वो भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे कमा नहीं सकता, ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुले ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीजों के लिए, काफी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, ऐसे ने अवार्डी है वो, और मेरे गुरु है, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी, और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहां पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था, तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे, तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया। सर देखिए छोटी सी बात है, पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: भाव में लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ गाने लिखने शुरू किए,
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखने
0: भी लिखना लिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर चार पांच गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक पांच छह गानों का, सात आठ मिनट का, एक 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ। अगले
1: को यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है, एक गाना सुनते हैं उसके बाद ये दास्तान सुनेंगे। तो बताओ यहाँ कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का
1: गाना है,
0: बहुत ही सुंदर गाना है, बहुत सुंदर गाना है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेली गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है, और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल
1: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ, और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना।
0: अच्छा,
1: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है डेस्टिनेशन।
0: वो
1: तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटी नहीं है।
0: हाँ।
1: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था।
0: अच्छा।
1: पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया, और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ। मैंने कहा यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला, और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था, 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
0: ओके।
1: और तो उसके बाद मैं दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया,
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
1: हो गया,
0: और वहीं वो
1: धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
0: मिले धुरंधर जी?
1: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
0: हाँ हाँ।
1: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, ऐसे मनगढ़ंत गानी सुना रहे वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग हाँ। जैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
0: जी।
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब प्यार मिलता, परिवार के सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा, और फिर वो रिटायर हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहां भी हूँ, बहुत ही अच्छे थे वो।
0: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
1: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग इसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
0: अच्छा,
1: क्योंकि
0: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये हाँ, बहुत
1: मैं बता रहा हूँ कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था। शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था।
0: हाँ।
1: तो लोग हंसते थे।
0: हाँ।
1: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
0: हाँ, हाँ।
1: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की। हाँ। मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था।
0: शक को सा बोल रहे हो,
1: हमेशा बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया।
0: हाँ।
1: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना।
0: हाँ।
1: जो इस पागलपंत में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था।
0: हाँ।
1: शामिल बोला था, मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोल रहा था इतने दिन से तुमसे, यही तो बोलवाना चाह रहे थे हम।
0: ओके, ओके।
1: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने बहुत बड़ा रोल किया, लोअर डेप नाटक में दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरोध खुटवत सर, और मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया, और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5 घंटे कम से कम स्टेज पे और लगातार बोलना है, और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज मैं नहीं करता था, सब उसको करना है, मैनेज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे सुनने आया कि यार मैं जहां से बिलोंग करता हूँ,

0: जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया। सेकंड ईयर से आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया। और फिर मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूं उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूं, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूं, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूं। लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ ही कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी एफर्टलेस दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा।
1: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है?
0: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल
0: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
1: मुखौटा
0: तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाजल लाइव थिएटर करते थे और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल
0: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
1: तो वहां से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया और वो थिएटर ओलंपिक हुआ उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था उसके 1000 लोग देखते थे और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहां से एक रेल की पटरी निकलती है और वहां पे एक गार्ड रहता है और वहां पे फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था तो वो गाना और उसके काफी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिया किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, कभी बड़े डायरेक्टर थे उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था वो डायरेक्टर का और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था 12 बजे के आसपास, एनएसजी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूं मेरे दोस्तों के साथ में और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूं, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूं, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूं, सर कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंचे, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे वो, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया
1: और यहां से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बताता कि वहां हर हाल में पहुंचना है जहां जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस जो मैंने ही लिखा था और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
1: अच्छा
0: वो क्योंकि रेडियो को अंदर था तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है ऐसे करके, उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
1: उसका एक गाना सुनाओ यार,
0: उसका टाइटल सुना दूंगा मैं आपको
1: बिल्कुल।

0: सुनाता हूँ मैं आपको।
1: उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी गंभीर बात आ देता हूँ कि एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के बदल दी। उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है,
2: क्या
1: तो वो क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होकर ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहां कहां पहुंचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
2: क्या बात है,
1: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इनलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
2: क्या बात है, क्या बात है।
1: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
2: वाह।
1: सुबह उठा तो कान के नीचे गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है,
2: क्या बात है, बढ़िया गाना।
1: जी जी जी।
2: कैसा रिस्पांस है इस नाटक का?
1: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है, तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने भी बोला हुआ है। तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कॉम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
2: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
1: जी जी,
2: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज,
1: जी जी, स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया, उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिग्गी। जिग्गी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दी। तो वो जिग्गी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा। अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है, बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था, गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था। अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर

0: टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है। काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कई तो फूंक में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या सुन
0: उसके लिरिक्स ऐसे हैं मतलब।
1: वाह वाह वाह देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में, और सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए।
0: जी जी जी,
1: तो फिर कभी मिलेंगे और आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भाई,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार।
1: बिल्कुल,
0: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में।
1: बिल्कुल,
0: मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहां से कहूं, जैसे गाने मैंने सुन सुन के बड़ा हुआ हूं मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूं, तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूं, तो मेरे लिए काम कर जाता है, और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके साथ जाता हुआ
1: सफर है।
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वामीनाथन दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अदनान सामी के गाए कुछ चुनिंदा गैर फिल्मी गीत।

इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 11:30 हुए हैं। चलिए चलते हैं आपको फिल्मी गीतों के सफर पर कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। सुनिए ये गीत फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में। संगीत है संजय लीला भंसाली का।

0: अभी आपने ये गीत सुना सिम्बा फिल्म से, राहत फतेह अली खान और असीस कौर की आवाज में। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों और दुनिया के कई हिस्सों पर दोनों देशों के हित एक समान है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा जटिल समय में भी बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चर्चा खुले मन से की जाएगी और सार्थक रहेगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक आठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 31,065 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मोल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्ज्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्ज्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र के नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और

0: से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जे हम

धरती कहे पुकार के इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

वो चांद मुस्काया, सितारे शर्माए, हमारा भी

0: एस डी वर्मन की तर्ज थी आशा भोसले की आवाज। बम्बई का बाबू फिल्म का ये गीत था, रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी।
1: सुनिए
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

जो सुल्तानपुरी के बोल थे लता मंगेशकर की आवाज ममता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रोशन की तर्ज थी। और इस गीत के पहले श्रोताओ हमने आपको सुनवाया बाबू फिल्म का गीत, किशोर कुमार अलका याग्निक की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था।

मुस्कुराना।

0: बाहर आने तक इस फिल्म का गीत आपने सुना, अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की आवाजें थी, राजेश रोशन की तर्ज थी। और श्रोताओं, यही थी हमारे आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो अपने रेडियो सेट को श्रोताओं जरा करीब लाइए, सुनिए कि आपको पुकारता है विविध भारती पर प्यारे प्यारे गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर, जहां होती हैं हमारी इबारतें और आपकी बातें, थोड़ी थोड़ी सी तलखी, कुछ कुछ प्यार, थोड़ा तकरार और बेशक हम और आप मिलकर तय करते हैं सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, इसी की बात हमने आज की इबारत में की है। तो आपके लिए पढ़ देते हैं आज की इबारत। वैसे हमारे जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख ही चुके हैं कि आज की क्या इबारत है, और जो साथी नए जुड़ने वाले हैं उनसे हम बता दें कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। और अब ये है आज की इबारत। दिल का मौसम खुशगवार हुआ और कहने लगा, मेरे दिल जरा लहरा के चल। आशिकाना मौसम कहता है, इनसे शायद पहले सपनों में मिले थे। ये बिंदिया जब जब चमकती है, दिल से एक आवाज आती है कि ये तो तस्वीर है, और तस्वीर में वो बात कहाँ। कायनात को देखो तो जीने की तमन्ना जाग उठती है। काश कुदरत भी बोलती और कहती कि हमें भी तुमसे कितना प्यार है। खोलती ऐसे राज़ दिल जिन्हें छुपाना मुश्किल होता है। ऐसे में मुमकिन है कोई खफा हो जाए, फिर मिलने के बहाने कुछ सूझे और घर से निकल पड़े। दीवाना बनकर ढूंढा उनको जो बादलों की तरह बेकरार कर जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो चलते हैं। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, जो जरूरी नहीं कि इस मौसम के साथ साथ चले। ये तो दिल का मौसम है, कभी खुशियों में लहराता है तो कभी रूठों को मनाता है, मन के फूल खिलाता है और सबको प्यार सिखाता है। तो चलिए चलते हैं आज इस अलबेले सफर पर, देखते हैं कि इस सफर पर आज किस किस से मुलाकात होती है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

एक समय ऐसा था श्रोताओ, जब साइकिल पर खूब सवारी की जाती थी और देखा भी नहीं जाता था कि भाई फासला कितना है, यानी फासला थोड़ा भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। तो साइकिल के बारे में आपका क्या कहना है, साइकिल से जुड़ी हुई बातें अगर आप चाहें तो हमसे जरूर साझा करें। आप सुन रहे थे जॉय मुखर्जी पर फिल्माया ये गीत, जो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। इशारा फिल्म का ये गीत था, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी, मुकेश का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज खुशगवार मौसम में प्रकृति की खूबसूरती के दिलों की बात होने वाली है। ये बिल्कुल सही है कि जब दिल खुशगवार होता है तो हमारे आसपास की प्रकृति जैसे हरी भरी वादियों, कलकल करती अविरल नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरनों की आवाजें दिल को आशिकाना बना देती हैं, जिससे हर चीज में खूबसूरती नजर आने लगती है। वैसे अगर कहा जाए तो सुंदरता देखने वाली चीज में नहीं बल्कि देखने वाले वालों के मन में होती है। इसलिए तो कहा गया है कि अगर मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा बसती है। यही कारण है कि उदास मौसम के विपरीत खिले हुए मौसम में हर चीज दिल को लुभाती है। आज की इबारत में ढूंढते रह जाओगे वाली बात नजर आती नहीं आ रही। आपने इशारों में सब कुछ लिख दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। वैसे हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम को देते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि दिल, मौसम, आशिकाना, बिंदिया, आवाज, तस्वीर, शायद, कायनात, तरन्नुम, तमन्ना, कुदरत, प्यार, राज, मुश्किल, मुमकिन, खफा, बहाना, घर, दीवाना, बादल, बेकरार, अच्छा, चलते और कुछ गीतों की सूची भी इन्होंने दी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सभी श्रोता मित्रों को प्रणाम, आइए चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में कुछ रोमांटिक, कुछ ठंडे गीतों से इस दोपहरी को यादगार बनाते हैं। वैसे तो सूर्य देवता अपनी तपिश से सारी दुनिया को जलाने की ठान कर बैठे हैं, हमारी विविध भारती ने भी ठान रखा है अपने गीतों की ठंडक से सबका मनोरंजन करने का। बस इंतजार है 1 बजे का। जी हाँ, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अगर आप नहीं सुन रहे तो बस फटाफट आ जाइए रेडियो के पास और कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। और एक और श्रोता लिखती हैं, आपकी जो पंक्तियां प्रेम के उस अनंत सफर का दर्पण है जहां हर मौसम एक नई दास्तान सुनाता है, आंखों में सजे सपने, बिंदिया की चमक और कायनात की खूबसूरती मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है, बादलों की तरह बेकरार करके जाने। और अच्छा, तो हम चलते हैं कब वो आखिरी मोड़।

शुदा साइकिल की यादें तो आपको बतानी ही हैं, साथ साथ आप ये भी बताइए कि ये जो गीत है वो एक टेंट के पास फिल्माया गया है, ऐसी कोई याद आपकी है क्या? क्योंकि टेंट में भी आपने कभी न कभी रात या दिन जरूर बिताए होंगे।

ये जो आखिर में आप सुन रहे थे संगीत, ये पंछी की उड़ान यानी उसके पंख की आवाज थी श्रोताओं। और ऐसा शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो कि आपने भी टेंट में रात बिताई हो या दिन बिताया हो या कहीं गए हो, खासकर अगर आपने पहाड़ों की सैर की है तो आप हमें ऐसे अनुभव बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि खुशनुमा मौसम मन को सुकून देता है, हल्की ठंडी हवा, खिलते फूल और बादलों की छांव दिल को नई उमंग से भर देती है। ऐसे मौसम में पुरानी यादें और दिल में बसी कोई खास तस्वीर बार बार मुस्कुरा उठती है। दिल में बसी तस्वीर केवल किसी चेहरे की नहीं होती बल्कि उन प्यारे लम्हों की भी होती है जो जिंदगी को खास बना देते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप इंसान को जीवन की भाग दौड़ से कुछ पल राहत के देता है और मन को शांति का एहसास कराता है, और खुशगवार मौसम उन यादों को और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, और तभी तो हम ऐसे मौसम में खास प्रकृति की ओर चल देते हैं, और तब हम ये नहीं देखते कि मौसम कौन सा है, क्योंकि हमारे दिल का मौसम जो कह रहा होता है कि भाई अब चलिए कहीं और चलें। एक हमारी और श्रोता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास एक साइकिल थी, उसे साइकिल पर बैठकर हमारे पापा सभी को स्कूल छोड़ देते थे। मुझे और मेरे दो भाइयों को मेरे पापा साइकिल पर ले जाया करते थे, और पूरी फैमिली पांच जने साइकिल पर ही जाया करते थे, कहीं भी जाते थे। और फिर जब मैं 12वीं कक्षा में आई तब मुझे स्कूल की साइकिल मिली थी, तब मैं साइकिल चलाया इन्होंने और इन्हें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पैर पैडल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जाने का जरिया मात्र नहीं बल्कि ये अपने आप में एक एहसास है। बचपन की पहली आजादी के एहसास से लेकर आधुनिक दौर में पर्यावरण को बचाने के आंदोलन तक साइकिल हमेशा से इंसानी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा रही है। एक और श्रोता लिखती है, सुंदरता आईने में नहीं इंसान के स्वभाव में दिखाई देती है। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर दिल खूबसूरत न हो तो सुंदरता अधूरी लगती है। असल खूबसूरती मुस्कान, सच्चाई और अच्छे व्यवहार में छुपी होती है जो दूसरों के दिलों में जगह बना लेती है, वही सच में सबसे सुंदर होता है। सुंदरता रंग या चेहरे से नहीं इंसान की सोच और उसकी सादगी से पहचानी जाती है। और कुछ लोग साधारण दिखकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं क्योंकि उनकी रूह बहुत सुंदर होती है। जी हाँ, जब रूह सुंदर होती है तो ज्यादातर देखने में ऐसा आता है कि मौसम चाहे जो भी हो, लोग चाहे जैसे भी मिले, बातें चाहे कोई भी कहीं जाए, लेकिन सुंदर लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है, और यही है दिल का मौसम। एक और श्रोता लिखते हैं, वाकई में दिल का मौसम खुशगवार हुआ था जब मैं स्वयं परिवार सहित जून 2024 में कश्मीर गया था। मौसम तो आशिकाना था ही, और धर्मपत्नी की बिंदिया जब चमकती थी और मेरे दिल की आवाज भी लहरा कर कहने लगती, हर पल मजबूर था कि कश्मीर कुदरत का नायाब करिश्मा है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो।

0: श्रोताओ, आपको कब ऐसा लगा कि धूप में भी छाया का एहसास हो चला है?
1: सांवली हंसी।

जाए पानी पानी, गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया। हाय।

इस गीत के संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और पाकीज़ा फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, उस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से पुराने सदाबहार गीतों की पंक्तियों उनके भावों और उनके मुखड़ों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बाग बाग हो गया। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर गोल्डन एरा का एक म्यूजिकल सफरनामा। आपके इस खूबसूरत पैराग्राफ को खंगालने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाबहार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं, और बहुत सारे गीतों की बात इन्होंने लिखी है, उसमें से बहुत सारे गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। जी हाँ, इनमें ये गीत भी है, मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल से गिरा, चोट खाई, पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर ने ले ली है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली जब कक्षा 8वीं में था, वो भी सेकंड हैंड 75 रुपए में खरीदी गई थी। जी हाँ श्रोताओं, और आगे लिखते हैं कि उस समय लगा जैसे मुझे हवाई जहाज मिल गया हो, इधर उधर बहुत चक्कर लगाया करता था। नई चीजें जब आती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, और खासकर जो साइकिल थी उसका क्रेज तो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी, यानी पहले गीत की इन्होंने बात करी है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं, और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। जी हाँ, जहां तक कीमत की बात है वो प्रकृति से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। साइकिल पर सवारी प्रकृति को पूरी तरह से महफूज रखती है, तो अक्सर जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतम से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, जहां प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चलना, बादलों का अदखेलियां करना, एक संगीत में मादकता वातावरण में घुली सी जाती है। प्रिय का स्वप्न में आना, प्रेमियों के मन में विरह की पीड़ा को मिटाकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति से भर देता है। एक और श्रोता लिखते हैं, कुछ गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल को सुकून की बारिश मिल गई हो, कुछ गाने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी शांति छोड़ देते हैं, कुछ धुनें सुनते ही पुरानी यादें धीरे से सामने आ बैठती हैं, ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो, कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है, जैसे नीले गगन के तले जिस पथ पर चला छोड़ दे सारी दुनिया, और ये सारे गीत इन्होंने लिखे हैं, जो गीत इन्होंने अंदाज लगाए। वैसे हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो जबरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत जो हैं आज के कार्यक्रम से मिलते हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का ये गीत। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लिखना बाकी है कि हमने पूछा था इस जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी है। कुछ एक श्रोताओं ने प्रेम कहानी के बारे में लिखा है, देखते हैं क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कल से एक लंबी यात्रा पर हूं, गाड़ी की चाल तो सीधी रखे हूं पर दिल लहरा के ही चल रहा है। कुदरत के हसीन नजारों को देखकर दिल का मौसम भी आशिकाना सा हो गया है। हम सबकी तरह कुदरत भी सबसे बोलती है कि हमें तुमसे प्यार है, मगर उसकी ये आवाज कानों में भले सुनाई नहीं देती तो उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने पर ही समझा जा सकता है। और ये उसी को महसूस हो सकती है जो प्रकृति को प्यार करे। जी हाँ, तो आप बताइए कि प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं। क्या आपने पेड़ लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वो कितना बड़ा हुआ है हमें बताइए, और किस चीज का पेड़ है। एक इन्होंने ही जिनका अभी मैंने जिनकी बात पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे गीतों की बात करी है। पहले मिले थे सपनों में, दिल लहरा के चल, बिंदिया चमकेगी, जो बात तुझ में है, देखते हैं कौन सा गीत आता है। तो एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, लेकिन दिल का सफर तो सभी जान लेते हैं, सभी समझ लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैडम जी, आज के सुरीले सफर में सभी फेसबुक साथियों के साथ पुष्पमाला पहनकर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। 10 बजे के तापमान 31 डिग्री पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात होकर शाम अवकाश होने तक अपना कार्य पूर्ण कर सकुशल अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं, और शुभकामनाएं लिखी है इन्होंने। एक और श्रोता लिखती हैं कि 2 दिन से सच में दिल का मौसम खुशगवार बना हुआ है, हालांकि गर्मी का कहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है और दिल कहर उठता है, मौसम है आशिकाना। वही हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की तरफ से एनसीसी कैंप राजगीर में लगा था, उस दौरान एक रात टेंट में गुजारनी पड़ी थी, बहुत मजा आया था। जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार घर से बाहर एक टेंट में रात गुजारी, वो दिन आज भी बहुत याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार किया है तुम बताना। और इन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं, और वैसे आप कोशिश करिए कोई ना कोई गीत तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कोई गीत नहीं मिलता। अपनी कोई यादगार तस्वीर

रोशन की तर्ज थी फिल्म ताजमहल का ये गीत आप सुन रहे थे। प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया, साहिल ध्यानवी की रचना थी। हमारी श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर कभी पुरानी नहीं होती, जब देखो उतनी ही नई नकोर लगती है, मगर तस्वीर में वो बात कहाँ जो तुम में है। ये सारी प्रकृति को देखो तो जीने की तमन्ना बरबस सिर उठाने लगती है। काश ये पेड़ पौधे भी बोलते, हमसे कुछ कहते, हम सब नहीं जानते कुदरत अपने कितने अंदर कितने राज समेटे है। आप चाहे जितना सोच लीजिए इस जीवन के बारे में, मगर बिना प्रकृति से जुड़े कुछ भी संपूर्ण नहीं है। ये बादल, ये दीवानापन, ये बेकरारी और कुछ अंतहीन सपनों के साथ आज चलते हैं एक और सुरीले सफर पर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी सुगम और सुंदर लिखावट देखकर मौसम के साथ दिल भी आशिकाना बन गया है। कुदरत का प्यार, जन्नत की तस्वीर जीने की तमन्ना बढ़ा रही है। यही आस नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर सचमुच का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखती है, ये मौसम रंगीन समा, और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, बिंदिया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तो दिल का मौसम खुशगवार हो जाएगा, दिल भी झूम उठेगा और कहेगा लहरा कर चल दिल्ली में, क्योंकि गाना ही दिल्ली में फिल्माया गया है। खैर, पैराग्राफ को पढ़कर ही पैर थिरकने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं और दिल का मौसम जैसे गीत आज की इबारत में शामिल हो सकते हैं। जी अभी चलने का समय नहीं हुआ है श्रोताओ, तो आप चलिए नहीं बल्कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं, श्रोताओं आपको इस गीत के बाद बताते हैं।

श्रोताओ, कभी आपका दिल का मौसम ऐसा हुआ कि चलो राजस्थान चलें और करें ऊंट की सवारी।

वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गया ये किताब सुन रहे थे फिल्म गाइड से, और आपको बताना है कि इसका जो आखिरी अंतरा है वो किस ऐतिहासिक किले में फिल्माया गया है। और एक और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके दिल का मौसम कभी ये कहता है कि राजस्थान चलें और ऊंट की सवारी करें। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी लिखी हुई इबारत के चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत भी शामिल, जो बात तुझ में है, और मेरी इबारत के बैक टू बैक दो गीत शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हमने कई पेड़ लगाए हैं और अभी जरूर लगेंगे। हमारे घर में हमने गमलों में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और उस मन भावन को भी अपने जो है घर का फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का तो मौसम है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत सुंदर है, खूबसूरत गानों की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रहे हैं पर मैं लिख नहीं रही हूँ, सुनने का ही मजा लूंगी। ऐसा मत कीजिए, आप लिखिए भी जरूर। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और निकलने वाला हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो, सपनों में मिलेंगे, तस्वीरों से बात करेंगे तो आशिकाना दिल लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज रूपी बिंदिया चमकती है, कायनात के इस रूप को देख चीनी की तमन्ना उठती है, राज दिल छुपाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होके दीवाना होकर बरसेगा। और बहुत लंबी इबारत है।

सुरीला सफर कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। कुदरत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। एक हमारी श्रोता लिखती है कि हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है, गर्मी भी है और धूप भी और मंद मंद हवा के झोंके भी आ रहे हैं, क्या पता शाम तक बारिश भी हो जाए। कुल मिलाकर सफर गीतों के साथ जिंदगी का भी सुहावना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कोरोना काल में ली गई साइकिल जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई। सुबह शाम एक दो घंटे जब तक साइकिल न चलाऊं चैन ही नहीं आता। सेवानिवृत्ति के बाद टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। जी हाँ, टाइम पास की जहां तक बात है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इससे जो एक एक्सरसाइज होती है वो बड़ी अच्छी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वैसे अभी मौसम तो खुशगवार नहीं है, लेकिन दिल का मौसम तो हमारे हाथ में है। सुरीला सफर में गाने सुनकर मौसम खुशनुमा हो जाएगा। आज इस इबारत में बहुत से गाने नजर आ रहे हैं और कुछ गीतों को भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं, साइकिल चलाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी साइकिल से बाजार घूमने जाता हूँ, घुटनों का व्यायाम हो जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, पाकीज़ा फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थी वो मीना कुमारी नहीं रही। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने बहुत साइकिल दौड़ाई है दिल्ली में, पूरा रिंग रोड नाप दिया जो पूरे दिल्ली के क्षेत्र को जोड़ता है।

श्रोताओ, आप फिल्म पहचाने और संगीतकार बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने में आपको

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, राजस्थान तो नहीं गई लेकिन अभी हाल में गुजरात के दीव में हमने ऊंट की सवारी की। थोड़ा डर भी लगा जब वो खड़ा होता और फिर बैठता है। एक और श्रोता लिखते हैं, फिल्म गाइड का गीत मेरी लिस्ट का पांचवा गीत है। एक लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ फिल्म में किले में फिल्माए गए ये गीत है। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम आता था और हम उस पर बैठकर घर से खेतों में और वहां से फिर घर आते थे। एक और श्रोता लिखती है कि हाँ, मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊं। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर में हुआ था गाइड फिल्म का फिल्मांकन गीत का।

में लो सजना इस फिल्म का गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

मित्रों, हम सभी अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हमें डर नहीं लगता, जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां कोई जोखिम नहीं होता। उसी जगह को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां आराम शुरू होता है वहां तरक्की रुक जाती है। जरा सोचिए, अगर एक छात्र सिर्फ वही पढ़े जो उसे आसान लगता है तो वो कभी नई चीजें नहीं सीख पाएगा। अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ आसान अभ्यास करे तो वो कभी महान खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान हमेशा डर के कारण नए अवसर छोड़ता रहे तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। याद रहे, सफलता, आत्मविश्वास और बड़े सपने हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं।

अगर जिंदगी में हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर और आराम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। बेशक कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी ग्रोथ नहीं होती। तमाम उदाहरण हैं सफल लोगों के, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही सफलता हासिल की है, अपनी काबिलियत से देश दुनिया में इतिहास रचा है, संघर्ष किया है। अगर ये लोग डर जाते, मेहनत से बचते या आराम चुनते, तो शायद आज पूरी दुनिया इन्हें नहीं जानती। सच तो ये है कि डर हमेशा कंफर्ट जोन के दरवाजे पर खड़ा रहता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम असफल हो गए तो, अगर हमसे गलती हो गई तो। लेकिन हमें याद रखना होगा, गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। असफलता बुरी

होती। कोशिश छोड़ देना बुरा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें गिरना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और खुद को बदलना भी पड़ेगा। अगर उड़ना है ऊंचा तो घोंसले की आरामदायक दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी।

मित्रों, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा डर के दूसरी तरफ मिलती हैं। कहते हैं, आराम इंसान को कमजोर बना देता है और संघर्ष इंसान को महान बनाता है। सफलता कभी भी आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो रातों को जागते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर उठकर लड़ते हैं। हमें खुद को पहचानना होगा और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना होगा, क्योंकि जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है, दुनिया पर वही राज करता है। अगर तूफानों से लड़ने का जुनून हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। साथियों, जिंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम खुद को चुनौती देते हैं। एक बीज अगर मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहना चाहे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ बनने के लिए उसे मिट्टी फोड़नी पड़ती है, अंधेरे से बाहर आना पड़ता है।

बारिश और धूप सहनी पड़ती है। उसी तरह इंसान को भी संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। तो आप भी बड़े सपने देखिए, खूब मेहनत कीजिए, हिम्मत के साथ डर का सामना कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाइए।

साथियों, जिंदगी आसान रास्तों से नहीं, चुनौतियों से महान बनती है। इसी के साथ संपन्न होती है आज की त्रिवेणी।

0: दौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक

0: साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एच 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल।

0: हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो जमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: तरत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत था, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आप सुन रहे थे दो चोर फिल्म का गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना।

0: यतन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: तुम इसको खेल समझे हो, मगर एक दिन दिखा देंगे

0: मोहब्बत इसको कहते हैं इस फिल्म का गीत था, मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिल

जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल झुके, जहाँ पलके तेरी खुले, जहाँ जुल्फे तेरी।

फिल्म माया का दोगाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला सलील चौधरी ने। यही थी आज के सदाबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं,

नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शरबत की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मन चाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मन चाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मन चाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंदू हाटोले, सीमा हाटोले, गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खयाम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतु रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाहा गुराई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से और भरत यादव काजल शर्मा विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तिलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आड़िया, भारती पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आड़िया।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और इस गीत की फरमाइश की लीलाबेन, स्मिताबेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: करते हैं खिड़की के पास।
1: वहाँ क्यों?
0: अरे भाई आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए, तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी।
2: हाँ बिटिया,
0: हमारी चाय यही दे देंगे ना?
2: लाए चाय बिटिया।
0: चल बैठ सुन।
1: अरे यार तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
0: तो ले चाय पी, एकदम गरम है।
3: अरे सुमी जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
1: कहाँ? ओहो जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
0: वो दिन को
1: कहाँ
0: तूने शायद शैम्पू किया है।
4: वाह
0: कितने खूबसूरत बाल है।
1: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
0: सुमन सुमी वो देख सुमन देखो
1: कहाँ।
0: अरे कितनी अच्छी लग रही है
4: सच में।
0: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
1: अरे यार ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी तैरती हुई चली जा रही है।
0: पर तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है न कोई एक्साइटमेंट
1: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप। गोरी गोरी दुबली पतली एक प्यारी सी बालिका जैसे
0: कटनार की गली, यही कहेगी ना। ले समोसा खा।
1: गरम गरम खिला रहे हो।
0: हाँ तो फ्रेंड्स
2: यस
0: मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है।
2: बिल्कुल वेलकम वेलकम।
0: ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है।
2: चंदन?
0: वैसे ये भी चंदन जैसी है। पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
1: रीमा तू नहीं सुनेगी
0: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना।
5: थ्री शेयर्स फॉर भाभी कवित्री।
0: तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
1: अरे यार समोसा खाने दे।
0: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
1: ओ रीमा अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आँखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन है वृक्ष चंदन।
0: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी समी?
1: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
0: ओके बाय
5: बाय फ्रेंड
2: बाय।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई।
0: कबूतरी? व्हाट डू यू मीन सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकुटती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो भाई आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं। जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अधखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी।

0: अभी तो वो भी मगन हो गए अपने भैया के साथ।
1: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
2: अरे भैया, आप घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
3: बहुत अच्छी, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
2: तार वो तो नहीं मिला। खैर, अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
3: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
2: रिजर्वेशन?
3: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
2: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
3: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
2: लेकिन भैया, अचानक ये सब क्या हो रहा है? मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया, क्या बात है?
3: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
2: ब्याह?
3: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
2: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
3: ये मजाक नहीं सुनी, सच है। घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
2: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
3: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखरी का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
2: ओ भैया,
3: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
2: हाँ, तभी तो आप भुगत रहे हैं। रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
3: सुमी बस प्लीज, दुख की रग मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना?
2: सामान बांध लो, सब लाट साहब हैं, मुझसे बिना पूछे सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब भी ये भी नहीं कर पाऊंगी। लड़का इंजीनियर है, अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा, चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को। पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
1: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: अरे सुमी सुमी देख तेरी बारात आ गई।
1: ए सुमी
0: मैं भी तेरा दूल्हा देखा। नहीं नहीं मुझे छोड़कर मत जा।
1: क्यों?
0: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे घबराना कैसा, सभी का ब्याह होता है।
0: अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है। छोड़ मुझे रूना, शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहा है। मेरा क्या होगा रूना?
2: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा, अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
0: ठीक है।

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ,
0: अंकल
1: शोमी का दूल्हा तुम्हें का

अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती। सुमी खुश रहे बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।

0: घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू, इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे सुनो तुम्हारा नाम लिखा था, अरे तार आप ताई आती दीजिए ना, जोड़ी की आती तार है, जोड़ी है।
0: आइए भाभी अब उधर बैठो, आइए भैया
2: तुम भी चलो।
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ, भाभी ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
4: अरे तैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा,
2: किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
0: अच्छी जी चाय पी लीजिए भैया,
2: आप लोग
0: भी चाय पीजिए।
1: क्या कहा, मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
0: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं, कितनी प्यारी है भाभी।
1: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है, कितनी सारी भाभियां हैं चारों तरफ, भाभी भाभी भाभी, वाह। लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पीनो, तुम भी पीनो, तुम भी पीनो।
4: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई, हे भगवान और प्रभु का क्या होगा। डॉक्टर ने कहा कुमारी की चांद सी बहू आते ही ग्रहण लग गया, हाय क्या होगा।
5: अरे बंधी भी तो पागल के साथ।
1: क्या कहा, अरे मैं पागल हूँ? तुम पागल हो, ये पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मन हुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। अरे ये मुझे क्या पहना दिया, हार अंगूठी, ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो नाचो गाओ।
4: भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया, भाभी बुआ पकड़िए ने, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
1: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो, देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
6: हूँ,
1: पागल नहीं।
4: बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
6: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
4: भैया को फिर दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रही हैं।
6: क्या कह रही,
4: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, चाची बुआ साबुन पकड़े हुए हैं।
6: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर क्या तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
4: अच्छा
6: भाभी, राहुल विकी तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो, मंजू तुम बेटे बहू को संभालना।
4: अच्छा बाबूजी,
6: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
4: ठीक है बाबूजी, भाभी ताई जी संभालिए भैया को। भाभी भाभी ये क्या आप रो रही हैं, भैया ठीक हो जाएंगी।

0: घबराने की कोई बात नहीं है भाभी, ये लीजिए पानी पी लीजिए।
1: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी, क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूँ या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं? सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
0: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
1: तो फिर?
0: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे। इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
1: ट्रेजेडी?
0: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गई, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
1: वहाँ ठीक रहते हैं?
0: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
1: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
0: उम्मीद दिलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
1: नहीं मंजू जी, अभी भूख नहीं।
0: तो लेटकर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबूजी आ गए हैं।
1: वाह कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे टेटी, इससे अच्छा होगा अगर आप मेरा गला घोट देती। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी टेटी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प निपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
0: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भोला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंभला गया है। किस सम्मोहन में बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान भैया ठीक हो गए हूँ। बाबूजी क्या हाल है भैया का?
2: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
0: है?
2: हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
0: बाबूजी?
2: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
1: पाप क्या होगा बाबूजी?
2: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
3: जी बाबूजी।
2: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
0: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
2: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
0: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
2: अरे बेटे की मोहब्बत।

0: को तुम लोग क्या समझोगे?
1: ठीक कह रही हैं आप। उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
0: मंजू मंजू,
1: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो?
0: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप में आता है पढ़ देती है।
1: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी। उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
0: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं। सोचता हूँ उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
1: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
0: ठीक।
2: अरे आगे आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू तो कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
3: मम्मी प्लीज, क्या सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगी? सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
2: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखू तू? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
3: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
4: बेटा
2: छोड़ बेटा, क्या हो गया मेरी सुनी बेटी?
3: आए डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
2: हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है।
5: इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, मैं देख ही लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
2: ठीक है ठीक है,
5: और घबराने की कोई बात नहीं है।
2: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
3: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे।
2: ठीक है,
3: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
2: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
3: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
2: धोखा? कैसा धोखा?
3: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते
2: हैं।
3: कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा। वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
2: अच्छा,
3: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
2: नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये भगवान, ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सुमी, ये क्या?
3: देखिए मम्मी, इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
2: क्या?
3: सुमी अब वहां नहीं जाएगी।
2: है?
3: रितेश वायलेंट हो जाता है मामा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। अमित एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
2: अच्छा
3: ठीक है मामा, आप सुमी के पास जाइए।
2: ठीक है।
4: वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही

0: Ρότσουτα. Αγκαστήμα, ο Δόκτωρ Ράτζανότη. Κι άχω τα πειρά με το τούτσο κοιτή. Ορμένη μου την πατλήνη σάδια. Ρήμα κοντόκ, ο Δόκτωρ Σάκουτ. Άχερ βόκιο τα πρέγε και τρούτε χουέ την σάρτη. Μουτζε χαρ φάκ σαμτσάτη ρετιέ. Παρ με κι άκαρου με.
1: अंदर आ सकता हूँ?
0: ओह, आप आइए बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
1: सब ठीक है। तुम कैसी हो सुमी?
0: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं?
1: यहाँ रहकर भी क्या करूँगा सुमी? एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो सुमी, आज आखिरी बार कह रहा हूं।
0: कैसे तोड़ दूं? ये दुनिया, ये समाज मुझे जीने देगा?
1: समाज फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन, तनाव और दुख। तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
0: राजन!
1: सुमी
0: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं।
1: सुमी
0: और अर्जुन हो?
1: ओ सुमी, मैं जीत गया सुमी, मैं जीत गया। शायद चंदन से सांप हट गए हैं
0: और बिखर गई है मादक गंध।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या
0: 1993 फिल्म।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवा भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार मुंबई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जाम थे
2: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
2: जी
1: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टर बाई रमेश तलवार, म्यूजिक बाई कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है
1: ना, वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सिलेक्ट हो गया और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहां चलते हैं, ये पिक्चर है, मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आंख से, तो मैं काफी
2: समागे।
1: तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर कपूर सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी चार असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर कपूर ने कहा पांचवा असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
2: जी।
1: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ।
2: Yes.
1: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म

0: अच्छी फिल्म देखी हुई है पांच आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुर्ला पे जाके कोलीवाला से आकाश कुर्ला एक आने का टिकट वहां जाता, पांच आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में
1: काम बन जाता था,
0: काम बन जाता।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो, मैंने देखी है बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे रही, यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती पांच बार से रखकर कोने में बैठा, साहब आगे चले। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए, मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे, तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप, मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा, देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर उसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था,
1: हाँ बिल्कुल
0: ऋषि कपूर उसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में
1: हाँ,
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त थे। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था, ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी, मैंने कहा यार वही स्मगलिंग वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना,
0: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में, वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया,
1: बाप रे,
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर, और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के, तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना,
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद देखते हैं, नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते हैं, सब है, गाने भेजते हैं, सब कुछ है, लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सबसे हटके होगी,
1: बिल्कुल, और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार

0: रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया

0: संजू कुमार सर राइटर
1: जी जी जी
0: उन्हीं का नाम है राइटर है राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर ले। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल। वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का।
1: हाँ।
0: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक,
1: खूबसूरत।
2: पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे, तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश से कहूँ पूछ लू, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा, तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा है, प्ले था बहुत अच्छा था, और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर का।
1: जी जी,
2: मैंने कहा ये जो इधर सेंट्रम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, मेरे वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता।
1: जी जी,
2: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
1: जी,
2: नाटक में अमेरिका में बैठे हैं तो मैं क्या करूंगा, तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती है, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उस जगह मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने।

0: अपनी
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी एनएफडीसी के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो वो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? मैंने जिया जी के पास पूछते हैं अगर वो करने के लिए हाँ कर दे। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का एबीसीएल के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती है अमित जी से भी बात कर लेती है, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। मैंने सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने मुझसे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे, अपने ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहे और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती है, मैं भी अपने लोगों को बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रिहर्सल हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सबने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सबने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उनका रमेश जी आप ही करिए।
2: अरे वाह।
1: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा हुआ था, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था। मैं आप ही करिए, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, आप करिए, आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मैंने करनी शुरू हो गया और फिर हमें अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
2: वाह वाह वाह।
1: उन्होंने कहा रोल मेन जिया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जज थ्रो आउट प्ले में है। और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं 3-4, तो सबने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली। क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुंह मांगा दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी इस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई। तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूंगा, रोल करूंगा। कब करना चाहोगे? कौन सी गया स्क्रिप्ट सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें

राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट बाद में सुनाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जय जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जय जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूंगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा। पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूंगा और पोएट लगूंगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए। लेकिन जो फिर तो उनके राइटर्स उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करे खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूंगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले। शबाना जी को ये थोड़ा करूंगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उनका फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने। शौकत भाभी ने अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही है, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहे कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखे। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूंगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनकी स्क्रिप्ट को फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटे मैच करनी पड़ती है शबाना की और वो, तो आप किसी और आप कमलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट आए, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे,

0: सबसे पुराना है।
1: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोरे करने लगा था उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है शाम का, उसमें कैरेक्टर का नाम शाम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं। और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी

0: साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी रात में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सिद्धदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिगमिलियन पे था प्ले, तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए सब लोग हिंदी में, सेम लाइन है पंजाबी और हिंदी नजदीक नजदीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिष्ट हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला, और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया, रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है, और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
1: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
0: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमलराज की बेटी वो आई प्रीक्षित सानी के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीजें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और प्रीक्षित सानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सानी ने रोल किया था, उन्होंने नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करने, वो अलग था अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है, तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार कर,
1: मैंने देखा है क्यूट प्ले है
0: हाँ, बहुत अच्छा, तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्चन स्टेज पे क्या हो सकता है उतना करके जमा लिया अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हैना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबली वाला लौट आया इन्हीं कैरेक्टर को लेके लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबली वाला जो एक्टरों के साथ अच्छे ये सोलो पढ़ती है काबली वाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एकाध बात कर लिया, फिर लुबना सिद्दीकी ने एकाध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ करो और स्टेज पे पढ़ो, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये उसके सारे बीज जो है काबली वाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबली वाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूँ। तो वो पोर्शन हमने काबली वाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: ये थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवां भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: धारा में आज
2: उजाले।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का

0: भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आए हूँ आपको जानकारी दे दे हमारी आज की सभा की शेष रहे और कल की पहली सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की पहली आज की सभा की शेष रहे मुख्य कार्यक्रम

अब उसे कुछ ही पल में ठीक 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बच्चों के मुख से। कार्यक्रम बच्चों के मुख से के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कॉमनवेल्थ दिवस और गर्मी और बच्चों के खेल विषय पर चर्चा। भेंट वार्ता के अंतर्गत आज आप सुनेंगे लेखन कला में अंडरलाइन पैराग्राफ और स्वच्छता का महत्व विषय पर सेवानिवृत्त शिक्षिका कल्पना मेहता से पुष्पा सैनी की बातचीत। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 10 बजे। रात 11 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आइए एक नजर हमारी कल की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। रोजाना की तरह हमारी प्रातःकालीन डेरे उतरंगों का आगाज होगा प्रातः के 5:51 पर। प्रातः 6 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

राउंड तरीक मानस गान आप सुनेंगे प्रातः के 6:30 पर, प्रातः के 6:40 पर सुनेगा कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम के तेरी बात का समय रहेगा प्रातः के 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 6:50 पर।

प्रातः के 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन। कार्यक्रम कुछ दिल से का समय रहेगा प्रातः के 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः के 8:45 पर।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। दिन के 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:05 हुए प्रस्तुत है कार्यक्रम बच्चों के मुख से।

जय हिंद बच्चों। बच्चों के मुख से कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दीदी पुष्पा सैनी, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ दिवस की। ये विश्व दुनिया के कई देशों के बीच मित्रता, सहयोग और एकता का संदेश देता है। कॉमनवेल्थ देशों का एक ऐसा समूह बच्चों, जिसमें भारत सहित कई देश शामिल हैं। इन देशों का उद्देश्य है एक दूसरे की मदद करना, शिक्षा, खेल, संस्कृति और शांति को बढ़ावा देना। और हर वर्ष दिवस मनाकर लोगों को यह संदेश दिया जाता है कि सभी देश मिलजुल कर रहें और दुनिया को बेहतर बनाएं। बच्चों के लिए दिवस बहुत ही खास है, क्योंकि यह हमें दोस्ती, समानता और सहयोग की सीख देता है।

0: होता है। जैसे हम स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वैसे ही बच्चों देश भी आपस में सहयोग करके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए हम सब मिलजुल कर एक रहने और एक दूसरे की मदद करने और प्रेम का संदेश फैलाने का संकल्प लें। देखिए बच्चों, आगे हम आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ संदेश और साथ ही आपका मन पसंदीदा फिल्मी गीत।
1: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
2: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए, 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
3: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: और बच्चों इस गीत के बाद हम आपको ऐसे टीचर से मिलवाने जा रहे हैं जो आपको पैराग्राफ, साफ सुथरी लिखावट और अंडरलाइन के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए करते हैं उससे कुछ खास बातचीत।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कॉपी देखकर टीचर खुश क्यों हो जाते हैं? जी हाँ, सुंदर लेखन जिसमें साफ सुथरी लिखावट, सही पैराग्राफ और अंडरलाइन का सही उपयोग हो, अगर ये सब कुछ हो तो आपकी पहचान बन जाता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेवानिवृत्त शिक्षिका कल्पना मेहता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नारी लोग कार्यक्रम में। नमस्ते मैम।
2: नमस्ते पुष्पा जी।
1: कल्पना जी, सबसे पहले हमारे बच्चों को ये बताइए कि सुंदर लेखन क्यों जरूरी होता है?
2: बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए सुंदर और स्पष्ट लेखन केवल एक कौशल नहीं बल्कि उनके समग्र विकास, आत्मविश्वास और अकादमिक सफलता के लिए एक आवश्यक नींव है। यह संज्ञानात्मक कौशल व रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। अच्छी लिखावट से विचारों की स्पष्टता आती है, परीक्षा में बेहतर अंक मिलते हैं और यह मस्तिष्क के लिए एक सक्रिय अभ्यास है। सुंदर लेखन के अनेक लाभ हैं, जिसमें पहला लाभ मैं आपको बता रही हूँ, बढ़िया शैक्षणिक प्रदर्शन। साफ लिखावट से परीक्षाओं में बेहतर अंक मिलते हैं और शिक्षक कार्य को आसानी से समझ पाते हैं। बेहतर स्मृति और एकाग्रता, लिखते समय मस्तिष्क सक्रिय रहता है जिससे याददाश्त तेज होती है और एकाग्रता बढ़ती है। आत्मविश्वास में वृद्धि, जब बच्चे साफ और सुंदर लिखते हैं तो उन्हें उपलब्धि का अनुभव होता है जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। संज्ञानात्मक विकास, लिखावट का अभ्यास सूक्ष्म शारीरिक क्रियाशीलता और तंत्रिका तंत्र के विकास को बढ़ावा देता है। यह बच्चों को अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का एक सुरक्षित माध्यम प्रदान करता है और अनुशासन का विकास भी होता है। सुंदर लिखने का प्रयास मन की एकाग्रता की आवश्यकता होती है जो बच्चों में धैर्य और अनुशासन पैदा करती है।
1: तो बच्चों, आपने सुना कि सुंदर लेखन क्यों जरूरी है। मैम, अंडरलाइन करने का सही तरीका क्या है?

0: ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि कितनी बार बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं अंडरलाइन करें या फिर ना करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मुख्य बिंदुओं पर अधोरेखांकन करते हैं, जिस बात पर हमें अंडरलाइन करनी है उसे बड़े अक्षरों में लिखकर उसके नीचे गहरी स्याही से अंडरलाइन करते हैं। और यह इसलिए जरूरी है कि जो बात अधिक महत्वपूर्ण होती है उस पर हम ध्यानाकर्षण के लिए अंडरलाइन करते हैं। इसका उपयोग उस बात पर जोर देने या इंगित करने के लिए किया जाता है।
0: वाह, ये तो बहुत ही काम की बात है बच्चों, आपके लिए भी। और मैम, पैराग्राफ बनाने से हमारे लेखन पर क्या फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल सही बात है, पैराग्राफ बनाने से हमारा लेखन आकर्षक व प्रभावी बनता है। पैराग्राफ संबंधित विचारों की एक श्रृंखला होती है जो एक केंद्रीय विचार को विकसित करती है। एक पैराग्राफ एक वाक्य या वाक्यों का समूह होता है। यह पाठ का वह हिस्सा होता है जिससे एक मुख्य विषय पर चर्चा की जाती है। इसके मुख्य लाभ हैं कि इससे स्पष्टता बढ़ती है, हर नया विचार नए पैराग्राफ में आने से भ्रम दूर होता है, पढ़ने में आसानी होती है। लगातार लंबा टेक्स्ट पढ़ने में आंखें थक जाती हैं, पैराग्राफ उसे आसान बनाते हैं। यह आपके विचारों को सही क्रम में व्यवस्थित करता है, मुख्य बिंदुओं पर फोकस, पाठक का ध्यान भटके बिना मुख्य बात सीधे समझ आ जाती है। और सुंदर दृश्य रूप में कि पन्नों पर खाली लेखन दिखने में आकर्षक लगता है।
0: कल्पना जी, कॉपी को साफ सुथरा रखने के लिए बच्चों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल सही बात है, लिखते समय बच्चे यह ध्यान रखें कि पेन या पेंसिल से इधर उधर निशान न लगे और जो भी लिखें ध्यान से लिखें, बार बार काट छाट न करना पड़े और कॉपी पर साफ सुथरा कवर चढ़ाकर रखें। लिखते समय पंक्ति पर अक्षरों का स्थान निर्धारित करें, यह सही स्थान पर लिखने से कॉपी देखने में साफ सुथरी लगती है।
0: मैम, अपनी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए बच्चों को रोज क्या क्या अभ्यास करना चाहिए?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है कि बच्चों की राइटिंग सुधारने के लिए सबसे जरूरी है रोजाना लिखित अभ्यास। पेन या पेंसिल जिससे भी लिख रहे हैं उसे सही तरीके से पकड़ें, अंगूठे और दो उंगलियों से और चार लाइन वाली नोटबुक का इस्तेमाल करें। बच्चों को धीरे धीरे लिखने और अक्षरों के बीच उचित जगह छोड़ें। राइटिंग सुधारने के मुख्य उपाय कि बैठने का उनका तरीका सही होना चाहिए, बच्चा सीधा बैठे और कमर सीधी रखें। पेंसिल पकड़ना बहुत जोर से न पकड़ें, यदि पकड़ गलत है तो पेंसिल ग्रिप का उपयोग करें। गतिविधि आधारित अभ्यास, लिखने के बजाय मिट्टी पर डंडी से या उंगली से हवा में अक्षर बनाएं और स्टेशनरी हल्के वजन वाली पेंसिल और अच्छी नोटबुक का उपयोग करें। मनोरंजक तरीका की कहानी लिखने या पसंदीदा कार्टून के नाम लिखने जैसी गतिविधियों से सुधार करें और धैर्य रखें। सुधार में समय लगता है, रोजाना सिर्फ 15-20 मिनट का शांत मन से किया गया अभ्यास पर्याप्त है।
0: तो बच्चों, आपने सुना कि मैम ने हैंड राइटिंग सुधारने के लिए आपको क्या क्या बताया, आप इस पर अमल जरूर करें। कल्पना जी, क्या सुंदर लेखन से बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है?
1: बिल्कुल सही बात है, सुंदर और साफ सुथरा लेखन बच्चों में आत्मविश्वास जगाने का एक शक्तिशाली साधन है, क्योंकि जब वे अपने अक्षरों को सुव्यवस्थित देखते हैं तो उन्हें सक्षमता का अनुभव होता है। प्रशंसा और साफ काम देकर वे अपनी योग्यताओं पर भरोसा करने लगते हैं। जब बच्चे क्लासरूम में या होमवर्क में साफ सुथरा लेखन कार्य करते हैं तो शिक्षक के मुंह से अपने आप ही वाह, शाबाश, गुड, वेरी गुड जैसे शब्द तारीफ में निकलने से बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे आगे और सुंदर लिखने का प्रयास करते हैं। सुंदर लिखने से उपलब्धि का एहसास होता है, अच्छी लिखावट देखकर बच्चों को लगता है कि उन्होंने एक कठिन काम पूरा किया है, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। शिक्षकों या माता पिता द्वारा सुंदर लिखावट की प्रशंसा करने से बच्चों को प्रेरणा मिलती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।
0: तो बच्चों, देखा आपने, साफ सुथरी कॉपी सच में आपकी पहचान बनती है।

0: कल्पना जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आपसे कि क्या डिजिटल युग में भी हैंडराइटिंग का महत्व उतना ही है?
1: जी हाँ, लिखावट आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि अधिकांश परीक्षाएं अभी भी हस्तलिखित होती हैं। लेखन एक अत्यंत उपयोगी कौशल है, और जो छात्र स्पष्ट और सुस्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते हैं, वो उन छात्रों की तुलना में बहुत पीछे रह जाते हैं जो अच्छा लिख पाते हैं। हस्तलेखन हमारी स्मृति को भी बेहतर बनाता है। अंत में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखन हमारी संस्कृति का एक अनूठा हिस्सा है, इसलिए स्पष्ट और शीघ्रता से लिखने में असमर्थ होना एक नुकसान है जो बच्चे की शैक्षिक प्रगति को सीमित करता है।
0: कल्पना जी, चलते चलते हमारे बच्चों को बताइए कि अंडरलाइन और हेडिंग्स का सही उपयोग परीक्षा में कैसे मदद करता है?
1: बिल्कुल सही बात है कि अंडरलाइन और हेडिंग का सही उपयोग करना एक कला है जो आपके साधारण उत्तर को भी असाधारण बना सकता है और परीक्षा में अधिक अंक दिलाने में मदद करता है। इससे परीक्षक के लिए कॉपी चेक करना आसान हो जाता है, जिससे उन्हें मुख्य बिंदु जल्दी मिल जाते हैं। इससे उत्तर व्यवस्थित लगता है, स्पष्टता आती है, समय की बचत होती है और अंडरलाइन मुख्य शब्दों पर फोकस करता है। पूरी लाइन न भरें, स्केल का प्रयोग करें और इससे समय भी सही उपयोग में आता है। ये परीक्षा में कैसे मदद मिलती है? एग्जामिनर का ध्यान जो महत्वपूर्ण बिंदु आप अंडरलाइन करते हैं, परीक्षक सीधे उन्हीं को पढ़ते हैं। इससे कॉपी की भी खूबसूरती लगती है। सुव्यवस्थित और साफ सुथरी कॉपी परीक्षक को अच्छी लगती है, जिससे गलतियों की संभावना कम होती है। जब आप जानते हैं कि आपने मुख्य बिंदु हाईलाइट कर दिए हैं, तो आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं और इससे आपको परीक्षा में अधिक अंक भी मिलते हैं। एक सुव्यवस्थित उत्तर हमेशा व्यवस्थित उत्तर की तुलना में बेहतर अंक लाता है।
0: जी, तो बच्चों, आपने सुना कि छोटी छोटी बातें कितना फर्क लाती है आपकी राइटिंग में। तो बच्चों, आज हमने जाना कि सुंदर लेखन केवल लिखना नहीं बल्कि एक कला भी है, जिसमें अंडरलाइन है, पैराग्राफ है और स्वच्छता का बहुत बड़ा योगदान भी रहता है। अगर बच्चों आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कॉपी भी सुंदर बनेगी और नंबर भी बढ़ेंगे। कल्पना मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे छोटे बच्चों को दी। तो देखिए बच्चों, आज से ही एक संकल्प है कि हम साफ सुथरा और सुंदर लेखन लिखेंगे। नमस्ते कल्पना मैम।
1: नमस्ते पुष्पा जी।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है? क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन।
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
4: वो कहाँ है?
5: मिठाई।
6: आरबीआई कहता है
7: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हा इंजन, डब्बू तुम्हा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो मादो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक

0: रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से फ्लाई छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुलपक डंडी टीले पर झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाथ गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर
1: बच्चों बातें तो हम आपसे और भी करना चाहते हैं लेकिन क्या करें घड़ी की सुइयां हमें इसकी इजाजत नहीं देती। कोई बात नहीं बच्चों फिर मिलेंगे करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। तब तक गर्मी बहुत है अपना शरीर का ध्यान रखिए घर के अंदर ही रखिए रहिए आप लोग और जो भी खेलना आप घर के अंदर ही करिए बाहर मत खेलिए। तो बच्चों फिर मिलेंगे तब तक लिए दीजिए आपकी दीदी पुष्पा सैनी को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा। नमस्कार जय।

क्या आप सुन रहे थे कार्यक्रम बच्चों के मुख से FM 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कराने नए पुराने
1: कराने नए पुराने कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले याराना फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, अनजान के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। आज जाने माने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की याद का दिन है और जाने माने संगीतकार राजेश रोशन का जन्मदिन है। तो आज के इस कार्यक्रम में कुछ गाने इन दो महान हस्तियों के नाम, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के नाम और संगीतकार राजेश रोशन का संगीत प्रतिक्रिया। ये गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाजें। फिल्म क्या कहना।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों

0: अधिकारियों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग ये फिल्म रिश्ता कागज का लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत।

0: उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजों में आप सुन रहे थे सावन कुमार टाक का लिखा ये गाना, संगीत राजेश रोशन का था, फिल्म थी कहो ना प्यार है। इसी के साथ आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में होंगे कई कार्यक्रम। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 1 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर जारी, अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से जल संग्रहण और संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। गंगा दशमी से शुरू हो रहा यह अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। इस अभियान को लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। और ब्यौरा समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी जितेंद्र प्रधान से।
1: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य भर में आम जन को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जल पूजन और शिव अभिषेक से करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। जागरूकता को लेकर वंदे गंगा, प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं, पीपल पूजन, पौधारोपण सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
0: राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन

0: تاہم نیتی 2024 میں اہم بدلاؤ کیے ہیں۔ نیتی کے تحت تکنیکی اپ گریڈیشن کے لیے دیے جانے والے ادھکتم انودان کو 50 لاکھ روپے سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ اس نیتی میں سنشودھن کی ادھیسوچنا جاری کر دی گئی ہے۔ مکھیہ منتری بھجن لال شرما نے راجیہ بجٹ 2026-27 کے تحت وت اور ونیوگ ودھیک پر چرچا کے دوران اس کی گھوشنا کی تھی۔ ادیوگ اور وانجیہ آیوکت نیلابھ سکسینا نے بتایا کہ تکنیکی اپ گریڈیشن پر دیے جانے والے انودان میں بڑھوتری سے ادیوگ ویشوک پرتسپردھا کے انروپ آدھونک تکنیک کو اپنا سکیں گے۔ اس سے اتپادن کشمتا بڑھنے کے ساتھ ساتھ گڑوتا میں بھی سدھار ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ستھانی اتپادوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک ضلع ایک اتپاد او ڈی او پی 2024 میں بھی مہتوپورن بدلاو کیے گئے ہیں۔ اس کے تحت رتنا بھوشن اتپاد سے جڑے ادیموں کے وستار پر بھی مارجن منی انودان دیا جائے گا، ساتھ ہی نجی سنستھانوں کے مادھیم سے تکنیکی اپ گریڈیشن بھی ہو سکے گا۔ ادیوگ وبھاگ کی اور سے جاری ادھیسوچنا کے انوسار سوکشم اکائیوں کو 20 لاکھ روپے اور لگو شرینی کی اکائیوں کو 15 لاکھ روپے تک کا مارجن منی انودان مل سکے گا۔ وہیں نجی سنستھانوں کے مادھیم سے تکنیکی اپ گریڈیشن کے لیے 5 لاکھ روپے تک کا انودان دیا جائے گا۔ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे। श्री रूबियो के दौरे पर को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री की इस यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, कूटनीति और रणनीतिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के भारत प्रवास पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस चर्चा में पश्चिम एशिया संकट से उपजे मौजूदा हालात और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के बालोतरा जिले में स्थित सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है, जो देश को रॉकेट से लेकर न्यूक्लियर प्लांट्स का कच्चा माल उपलब्ध करवाने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायक होगा। केंद्रीय खान मंत्रालय की एक बैठक में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुर्लभ खनिजों के भंडार को रेखांकित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
1: नारी शक्ति बंधन अधिनियम।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भीलवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हमीरगढ़ हवाई पट्टी का जायजा लिया। इसके बाद श्री मेघवाल ने हमीरगढ़ वीको क्षेत्र में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के कार्यालय में उद्यमियों से संवाद किया। श्री मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में भीलवाड़ा में व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने के प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे लागू करवाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ उसको लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे। हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, सरकार की तो पहली प्राथमिकता है।
0: केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए जांच केंद्रों जीएटीसी की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने ये

0: जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों में जीएटीसी वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच शामिल है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ का शुभारंभ किया गया है। राणा पूंजा सभागार में आज आयोजित एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पीठ की विधिवत शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से स्थापित ये अध्ययन पीठ भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों पर आधारित राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर उच्च स्तरीय शोध और अकादमिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगी। फिट इंडिया मूवमेंट के संडे ऑन साइकिल मुहिम के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैली, योगाभ्यास सहित विभिन्न फिटनेस गतिविधियां आयोजित की गई। विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों, खिलाड़ियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इस मौके पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के चारों ओर साइकिल रैली रखी गई। इसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भाग लिया। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन हुआ। हनुमानगढ़, जैसलमेर, राजसमंद, कोटपूतली, बहरोड, सलुम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली में भी साइकिल रैली के जरिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। कई स्थानों पर योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम को भी इसमें जोड़कर योगाभ्यास, जुम्बा, रोप स्किपिंग सहित अन्य गतिविधियां हुई। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में प्रचंड गर्मी और लू का असर बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आज दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित रहा। दोपहर में बाजारों में लोगों की आवाजाही कम रही। चूरू में दिनभर लू चलने से लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ा। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लोग तेज गर्मी से बचाव के लिए कई जतन कर रहे हैं।
1: जिले में तेज लू और चिलचिलाती धूप के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण दिन में बाजारों में लोगों की आवाजाही नहीं होने से चहल पहल कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण खासी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रही हैं। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने, धूल भरी हवाएं चलने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 26 और 27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने और कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। वहीं 28 से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ क्षेत्रों में आंधी और कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। राजसमंद जिले के आमेट में आज एक सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आमेट देवगढ़ स्टेट हाईवे पर मोटरसाइकिल को सामने से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कई कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर जारी, अगले कुछ दिन राहत के आसार।

नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। गंगा दशमी के अवसर पर शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में कई गतिविधियां होंगी। यह अभियान 5 जून तक चलेगा। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, पौधरोपण, श्रमदान और जल संरक्षण प्रदर्शनियां सहित अन्य आयोजन होंगे। शहरों से लेकर गांवों ढाणियों तक जन भागीदारी से कई कार्यक्रम रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में डूंगरपुर के 2 दिन के दौरे पर रहे। उन्होंने

0: मंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में डूंगरपुर के दो दिन के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री शर्मा स्वच्छता सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई के डूंगरपुर मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यहां लोगों ने स्वच्छता को जन उत्सव बनाया है। पूरे देश और प्रदेश में डूंगरपुर की स्वच्छता मुहिम की चर्चा है। रात्रि चौपाल के तहत मुख्यमंत्री जिले के 84 क्षेत्र की धंबोला ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने महिलाओं, किसानों और युवाओं की समस्याएं सुनी और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को टैबलेट वितरित किए। बालिकाओं की मांग पर मुख्यमंत्री ने धंबोला के स्कूल में प्रयोगशाला बनाने के निर्देश दिए। साथ ही गांव में तालाब संरक्षण के लिए 50 लाख रूपये की राशि देने की घोषणा की। जिले में जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत जनभागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर देशल दान की अगुवाई में इसका शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आदि सेवा केंद्रों के जरिए ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को अभियान से जोड़ने की बात कही। टीएडी उपायुक्त सत्यप्रकाश कसवा ने बताया कि इस अभियान में जिले के 638 गांवों में संतृप्ति शिविर लगाए जाएंगे। वहीं आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स की मदद से जनजातीय क्षेत्रों में 17 विभागों से जुड़ी सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में खाद्य सामग्री से जुड़े दुकानदारों से साफ सफाई रखने और मिलावटी सामान नहीं बेचने की अपील की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें दुकानदारों को शुद्ध और साफ सुथरी खाद्य सामग्री रखने और बेचने के लिए पाबंद किया गया है। अभियान के तहत विभिन्न खाने पीने की चीजों के नमूने इकट्ठे कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जिले में पिछले दिनों ग्राम विकास रथों की रौनक देखी गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी भीलुड़ा गांव में आयोजित ग्राम विकास रथ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की अपील की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी पिछले दिनों डूंगरपुर प्रवास पर रहे। राज्यपाल ने कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल ने वीरांगना कालीबाई की शहादत को याद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कभी भी परीक्षा में नकल नहीं करने का आह्वान किया। जिले में पिछले दिनों कॉफी विद कलेक्टर संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला कलेक्टर ने प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में छात्राओं से संवाद करते हुए जिला कलेक्टर ने उन्हें करियर मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने छात्राओं को अपडेट रहने और डिजिटल तकनीक सीखने के लिए प्रेरित किया। मेरा युवा भारत कार्यक्रम में पिछले दिनों डूंगरपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं हुई। जिला युवा अधिकारी शुभम पूर्विया ने बताया कि समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। जिले में पिछले दिनों मंगल कलश यात्रा की धूम रही। गांवों और शहरों में निकली इन यात्राओं में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। साथ ही उपखंड मुख्यालयों पर शिवालयों में विशेष कार्यक्रम रखे गए। ये मौका था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग और जिला प्रशासन की ओर से ये पर्व मनाया गया। इसमें शिवालयों में अभिषेक और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। जिला स्तरीय स्वाभिमान पर्व कारोली गांव के भुवनेश्वर महादेव मंदिर में हुआ। जिले में जनगणना 2027 के तहत इन दिनों मकान सूचीकरण और आवास गणना का काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रगणक घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। 1 मई से शुरू हुई जनगणना प्रक्रिया के तहत शुरुआती 15 दिनों में लोगों को स्वगणना का विकल्प दिया गया। इस अवधि में इच्छुक नागरिकों ने खुद ही अपने परिवार और मकान से जुड़ा ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज किया। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपे से सिंधिया बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, प्रदेश में कालेओं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे शुरुआत वेला। जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन सारू वेला कई कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में खास बदलाव करया। तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दी आजावन वाली सब्सिडी ने 1 करोड़ रुपया करया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करनो सरकार री ठावी प्राथमिकता। और प्रदेश

0: उत्तराखंड करा हल्का माए करड़ी गर्मी और लू रो असर बनोड़ो है। आप तक कुछ दिन राहत रा आसार ने। समाचार अरे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रदेश माए काले जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन कानी महत्व मान्या जा रिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे शुरुआत वेला। गंगा दशमियों सर्वेरियो ओ अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस ताई चालेला। और ब्यूरो साथे समाचार कक्षों मारा सहयोगी जितेंद्र प्रधान।
1: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य भर में आम जन को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जल पूजन और शिव अभिषेक से करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। जागरूकता को लेकर वंदे गंगा, प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं, पीपल पूजन, पौधारोपण सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
0: राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में खास बदलाव करिया है। ई नीति रे तहत तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जाने वाली 32 सब्सिडी ने 50 लाख रुपयों बधार 1 करोड़ रुपया कर दी गया है। मुख्यमंत्री राज्य बजट 2026-27 रे तहत रोकड़ और विनियोग विधेयक माथे चर्चा रे दौरान ई बारा में ऐलान करियो हो। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त श्री नीलाभ सक्सेना बतायो के तकनीकी अपग्रेडेशन माथे दिया जाने वाली सब्सिडी बढ़ावनु प्रदेश रा उद्योग वैश्विक दौड़ मुजब आधुनिक तकनीक ने अपना सकेला। इनु उत्पादन बूतो बढ़न रे साथे साथे गुणवत्ता में सुधार वेला। इनके साथ ही स्थानीय उत्पादन ने बढ़ावो देवन सारू एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में 2 महत्व बदलाव करी गया है। इनके तहत रत्नाभूषण उत्पादों जुड़िया कारोबारा रा फैलाव माथी मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाएला। साथ ही निजू संस्थानारी मार्फत तकनीकी अपग्रेडेशन ही वह सकेला। उद्योग महकमा कानी काडीजी अधिसूचना मुजब सूक्ष्म इकाया ने 20 लाख रुपया और लघु श्रेणी री इकाइया ने 15 लाख रुपया तारी मार्जिन सब्सिडी मिल सकेला। वही निजी संस्थान री मार्फत तकनीकी अपग्रेडेशन सारू 5 लाख रुपया री सब्सिडी दी जाएला। अमेरिका रा विदेश मंत्री मार्को रूबियो रे काले जयपुर आवन रो कार्यक्रम है। वे आमेर मेल देखेला। श्री रूबियो रा दौरा ने लेर जिला प्रशासन और पुलिस कानी तगड़ी तैयारियां करी जावे। अमेरिकी विदेश मंत्री जी इस यात्रा ने भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक कूटनीति और रणनीतिक संबंधों जोड़ने देखो जावे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन रा भारत प्रवास माथे है। वे आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिलिया। हैदराबाद हाउस में भी बतल माए आथुनी एशिया संकट पैदा मौजूदा हालात और हिफाजती मदद माथे बतल करी जी। इन पछे डॉक्टर जयशंकर कहो के भारत और अमेरिका के बीच गहरा वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों का संबंध पूरी दुनिया माथे असर पड़ियो है। वना कहो के बतल रो सिलसिलो चालतो रहेला और इन राचो खा नतीजा मिलन री आस है। बालोतरा जिलारी रिफाइनरी जैसी महत्व परियोजना देश री ऊर्जा हिफाजत रे साथे सामरिक और माली हिफाजत माए महत्व भूमिका निभा रियो है। अठे सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स माए दुर्लभ खनिजारो भंडार मिलियो है जो देश ने रॉकेट लेर न्यूक्लियर प्लांट्स रा कच्चा माल उपलब्ध करावण और साफ ऊर्जा रा हल्का माए अगाड़ी बनावण माए मदद करेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स और सिवाना ग्रेनाइट माए रियर अर्थ एलिमेंट और हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट मिलिया है। वना एहलकारा ने निर्देश दिया कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स रा असरदार क्रियान्वयन सारू प्रदेश माए नोडल एहलकार नियुक्त कर आ जावे जिनु काम माए तेजी आ सके। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। केंद्रीय कानून मंत्री

0: दर्जुङ मेघवाड़ आज भीलवाड़ा रा दौरा माथे रिया जठे वना हमीरगढ़ हवाई पट्टी रोज आयोजो लियो इन रे पछे श्री मेघवाल हमीरगढ़ रिको हल्का माए भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन रा दफ्तर माए कारोबारियों बतल करी। श्री मेघवाल खबर नविसा ने बतल माए भीलवाड़ा माए कारोबारी उड़ान शुरू करने रा प्रस्ताव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सामी राखण रो भरोसो दियो। नारी शक्ति वंदन अधिनियम रो जिक्रो करता वना कहो के इन लागू करनो केंद्र सरकार री ठावी प्राथमिकता है।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ उसको लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे। हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, सरकार की तो पहली प्राथमिकता है।
0: केंद्र सरकार वजन और मापी जांच प्रणाली ने मजबूत करण सारू जांच केंद्र जीए टीसी री भूमिका रो पसारो करेला। ई सारू साल 2013 रा कायदा माए बदलाव करी जो है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय आ जानकारी देवता बतायो के नुआ कानूना माए जीए टीसी वजन और माप री 23 श्रेणिया रो सत्यापन कर सकेला। इन माए पेट्रोल डीजल सीएनजी एलपीजी एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच भी है। ई पहल रो मकसद कारोबार ने साफ गोई बनावनो और तकनीक ने बढ़ावो देवनो है। बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ की शुरुआत करी जी है। राणा पुंजा सभागार में आज हुआ एक कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी पीठ की विधि पूर्ण शुरुआत करी। श्री देवनानी कहो कि विश्वविद्यालय कानू स्थापित आ अध्ययन पीठ भारतीय ज्ञान परंपरा एकात्म मानववाद अंत्योदय ग्राम विकास सामाजिक समरसता और सामाजिक जीवन मूल्य माथे आधारित राष्ट्र निर्माण जैसा मुद्दा माथे आला दर्जारो शोध और अकादमिक गतिविधियां रो खास केंद्र बनेला। फिट इंडिया मूवमेंट रे तहत संडे ऑन साइकिल रे तहत प्रदेश रा न्यारा न्यारा ठोड़ा साइकिल रैली योग अभ्यास समेत न्यारा न्यारा फिटनेस गतिविधियां भी। न्यारी न्यारी ठोड़ा अहलकारा खिलाड़िया नौजवाना और फिटनेस प्रेमिया उमावरे साथ ई मुहिम में हिस्सो लियो। ई मौके जयपुर एसएमएस स्टेडियम रात चारों मेर साइकिल रैली भी लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जाग जगावन सारू ओ आयोजन भी हो। हनुमानगढ़ जैसलमेर राजसमंद कोटपुतली बहरोड सलूंबर बालोतरा झुंझुनू और पाली माई साइकिल रैली की मार्फत लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने रो संदेश दे रिजियो। कई ठोड़ा योग दिवस काउंट डाउन कार्यक्रम ने इणो जोड़ ने योगा अभ्यास जुम्बा रोप स्किपिंग समेत दूजी गतिविधियां भी। और अबे मौसम प्रदेश रा घनकरा हल्का माए करड़ी गर्मी और लू रो असर बनी उड़ो है। मौसम केंद्र जयपुर आज 18 जिला माए हीट वेव रो ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करियो है। राजधानी जयपुर माए आज दिन माए तेज तावड़ा माए आम जिंदगी माथे असर पड़ियो। जैसलमेर माए आंधी चालनु लोगों ने गर्मियों थोड़ो आराम मिलियो। चूरू माए आखे दिन लू चालती रहनु लोगों रा काम काज माते असर पड़ियो। बाड़मेरू हमारा खबर नवीस बतायो कि वठे लोग करड़ी गर्मियों बचन सारू कई जतन कर रिया है।
2: जिले में तेज लू और चिलचिलाती धूप के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण दिन में बाजारों में लोगों की आवाजाही नहीं होने से चहल पहल कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण खासी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रही हैं। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जसवंत सिंह डूडी आकाशवाणी समाचार बाड़मेर।
0: मौसम महकमो आवता 3-4 दिन राज्य रा घन करा हल्का माए मौसम साफ रेवण और धूल भरी हवा चालन तापमान माए 2-3 डिग्री सेल्सियस री बढ़वा री आस जताई है। 26-27 मई ने आथोनी राजस्थान रा कुछ हल्का माए बत्ती रो तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होवण और कठे कठे लू चालन री आस जताई है। वठी 28-29 मई एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा असर प्रदेश रा कुछ हल्का माए आंधी और कठे कठे बिरखा होने री आस जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित किया जाने वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 31 मई ने आप रा विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी वेला।

इशारो आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई तय आप राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम री मार्फती आप विचार भेज सको हो। मैं अबे आखिर माय खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। प्रदेश माय काल्यू वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू वेला। जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन सारू वेला के एक कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 माय खास बदलाव करया। तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जावन वाली सब्सिडी ने 1 करोड़ रुपया करया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करनो सरकारी ठावी प्राथमिकता। और प्रदेश रा घनकरा हल्का माए करड़ी गर्मी और लू रो असर बनोड़ो है। आप तक कुछ दिन राहत रा आसार नी। मेंडर साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करो जाएगा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7 बजे अब किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल।

0: राम राम राम राम। आपने नाम शंभू भगत
1: कया काम ना हा साहब? आप
0: माजी काम नो
1: माजी तो कई कराई साहब
0: जलोना नहली करने
1: जलोना नहली करने आ पंचायत माजियास लागे नी
0: माजिया लागे अर्थुना तहसील
1: साहब आप तो उम्र सुधा दिखाई रहे थे आपने मुलाकात थी ना मन खुशी बढ़िया लागी साहब
0: बढ़िया वीरो धन्यवाद
1: थोड़ी सरसा करी लाइन थी मैंने
0: हाँ बढ़िया
1: आप हूँ काम कर जा
0: खेती बाड़ी नो धंधो करी रिया जी हमें दे
1: मैं तो उम्र सुधा थे आप पहले बनाई थी तुम्हारा
0: हमारा वार में थी बनाई थे मामूली बनाई थी कोई समझो बनाई है गणता था
1: अच्छा
0: पण बोला पण वाला आई के ताजे बनाई ना शहर आके
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो बनाई तो घणो
0: बनाई ने
1: तो संदू बाबा मैंने तो पास गाँव में गाँव स्कूल थी गिजी ना
0: गाँव में गाँव आऊ तो सतुर धज्जा भाई ने पढ़ाई चालू रही है जोर पढ़ाई तो हाजरी पढ़ाई चाली रही है परदा पड़ी पड़ी बेटी है बे भाजनी
1: सही है
0: एक भाजनी तीजा भाजनी है नान भाजनी बेटी है
1: बेटी है सोरम तो आपके पास सरकार की सुविधा ली गई है कपड़े सब
0: रही है इन्होंने हेल्प थी रही है पढ़ाई वाला थोड़े हमें जो कमी पड़े है कुछ ना चाली रही है जन लग लागी गई है सरस्वती है
1: बिल्कुल उसी जगह
0: उसी जगह है नाई नहीं लंबर लावे।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान भाई देखो पासा आ विज्ञापन भी होने ने अबे आपड़ा खेतीवाड़ी की बात करो। किसान भाई देखो अपना खरीफ फसल ने पहले हमने अबे भाई सब तैयारी करी गया थका है केम के आबा वाली फसल अपने मानसून आतम और तैयारी साली रही थकी है। मैं भाई आ देशी खातर ना किया है ने मैं आ जुताई नु काम मैं थोड़ा बहुत बाकी है तो ने जुताई नु काम भी करी गया थका है।

कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भ्रंग का गुरु कर ले आप समान, गुरु कर ले आप समान। अरे ऐसो रे दाव भीरा और नहीं आवे, ऐसो दाव भीरा

वाह भाई, संजय मैडम सतगुरु आया बंजारा। किसान भाई आनंद आई गए भाई। किसान भाई वाते गरवानी गणेश चती पण सोरा नो टाइम पूरो थ जो आज सूटा पड़ा ने काले नई जानकारी लेन फेरी आवंगा। आज नानू बहन आलो आज्ञा आवजू। राम राम राम राम, राम।

सभी किसान श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम चौपाल एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7:30 होने को है। कृपया मलिए अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर राज्य का एकमात्र स्थान जहां मोतियाबिंद का इलाज पेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है अब जयपुर में संभव।
3: उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम।
2: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर टॉक फाटक टॉक रोड गांधीनगर जयपुर कॉल 2707580 और 9829017147।
4: खेती बाड़ी कार्यक्रम में सुनवा सगड़ा काश्तकार भाई बहनों ने राजूभाई घणो घणो राम राम और महेश भाई धन भी राम राम
5: राम राम। राजू भाई आपने और जो अपना किसान भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं बाने भी घनी घनी राम राम सा। राजू भाई
4: हाँ जी
5: देखो अबार जगह दिन ही गर्मी का इस समय जगह किसान भाई ही माँ के लिए विशेष तो कोई काम देखो फसल संबंधी अबार कोई फसल को नहीं तो पर आवाज का किसान भाई काम कर सके वो एक तो ये है कि जो गर्मी है तो गर्मी की गहरी जुताई इसमें कर ली।
4: बिल्कुल गोती छोकी बात बोला गहरी जुताई करबाओ का ही है जो आपनी जो खेत है बिक मन आबाड़ी जो फसल है बिके लिए रामबाण को काम करे ताकि जो अपने जो फसल में खरपतवार उगजावे और कोई जो रोग लगे और जो नुकसानदायक जो कीड़ा है कोई भी तो बस वो अपन राहत मिल सके क्योंकि वहां का अंडा है और जो बीज है खरपतारा का बाने आप गहरी जुताई कर और गर्मी की जो तपत है दियो आप नष्ट करके राहत ले सका अपने खेती किसानी का मायन और बाका सु होबा नुकसान सो आप बचत कर सका ताकि अपना जो फसल है जिन मायन अनावश्यक पौधा नहीं उगे और अपना जो रोग और कीड़ा है वह आवारी फसल में नहीं हुआ इसलिए अपन ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई विशेष रूप से करनी चाहिए और इसके लिए अपने जो मिट्टी पलटने वाला हल है बीज और जो माउल्ड बोर्ड हल है और जो जो तवा जो है अपने जो बोला आप हेरो कल्टीवेटर और के नाम पलेवा तो वह अपन करना चाहिए ताकि मिट्टी है जो डेला उपड़े और गहराई तक मिट्टी है जो खोदर देखो मैं तपत जावे तो दिन का है आपने जो मिट्टी है देखो वायु संचार चौको रसी देखो जो तापमान है वो भी चौको बने रसी और जो पीएच मान है वो भी देखो सही रसी और जिन जलधारण ग्रहण करवाने की जो क्षमता है वो भी विकसित हो सी।
5: हाँ और देखो मिट्टी की जो उर्वरता है वह भी बढ़े कि पुरानी फसल का जगह अवशेष ही तो सड़कर खाद बन जाएगी और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाए। खरपतवार का माए बहुत कमी आवा है जगह बहुवर्षीय खरपतवार ही बाकी जकी जड़ पड़ी रहे खेत में जमीन में वह धूप से सूख कर खत्म हो जाए ही और अगली फसल में खरपतवार कम आवे कीट और रोग को नियंत्रण होवे जगह कीड़ा लार्वा प्यूपा और जगह अंडा पड़े रहे वह तेज धूप से नष्ट हो जाए और खेत को पानी खेत में रह जाए।
4: बिल्कुल
5: तो दो जुताई अपने करनी ही सीधी और खड़ी ढाल के विपरीत दिशा में अपन ने जुताई करनी है क्योंकि सीधी दिशा में कर देगा तो फिर जो पानी है वो सीधा आ जाए खेत कमाए सो और जो मेड़बंदी भी देखो राजू भाई जरूरी है मेड़बंदी भी कर देगा तो फिर जो मानसून जब पानी बह के आवे तो खेत को पानी खेत में रहे और खेत की मिट्टी को कटाव न हो।
4: बिल्कुल बहुत ही चुकी बात बताया देखो मेड़ रहे तो अपना जो पानी है खेत को वो खेत में रहे और आ सकता हूँ ज्यादा देखो बरसात में पानी ज्यादा भी हो तो बिंदी बोए एक तरह अपना जो मेड़ ऊंची बने रहे तो खेत के अंदर ही रहे और खेत में कटाव लाग और मिट्टी भर नहीं जावे ताकि जल प्रदन अपने जो मिट्टी को है वो नहीं हो।
5: हाँ।
4: और देखो एक साथ ही देखो महेश भाई जी बात टेम है आप अगले जो बरसात को समय है बिके मायन आप कोई फलदार पौधा लगावा उद्यान लगा बचावा तो बिके लिए भी उचित समय है कि आप मिट्टी पानी की जांच करा लें आपने जो मिट्टी हर पानी है वो आपने जो खेती किसानी भी के लिए उपयुक्त है कौन है आपनी जो मिट्टी है कितना जीवांश पदार्थ है कौन सा पशु तत्व की कमी है और कौन सा बिन्न विक सिफारिश के अनुसार खाद उर्वरक और जीवांश पदार्थ देवा की आवश्यकता।

0: अपना जो सबा किसान भाई है बन आपके जो मिट्टी है जो तय करे बाद में मेड़ के पास से छोड़ के और छायादार वृक्ष ने छोड़ के मिट्टी को सैंपल लेना है जगह एक खेत में लगभग पांच छह जगह सैंपल लेना है और दिन के बाद में बन सारा ने एक जगह मिक्स करके और बाँ को प्लस को चार भागम टुकड़ा करना है फिर आमा सामा का रखना है यान की जो प्रक्रिया है वह करनी है बा को वजन आधा किलो तक नहीं रह जाएगा
1: अच्छा।
0: और लास्ट में जो बचे आधा किलो सैंपल भी पर अपना जो खेत कसरा है भी को नंबर लिख दो नाम लिख दो खुद को और आपको जो पत्राचार को पत्र है वो लिखकर पर्ची भी डाल के नजदीकी जो आपने मृदा स्वास्थ्य केंद्र है बड़ा या नजदीकी जो खेती बाड़ी आपने जो कृषि कार्यालय कृषि पर्यवेक्षक ने या सहायक कृषि अधिकारी ने देर आप मिट्टी की और पानी की जो ट्यूबवेल है या आपने जो फार्म पॉइंट है दू आप सप्लाई करा दिन में एक आधा लीटर की बोतल भर के अपन ले जाना है
1: बिल्कुल देखो आप नहर के पानी से सिंचाई कर रहे हैं या ट्यूबवेल से कर रहे हैं जो सिंचाई को जल है बिल्कुल सैंपल लेके भेज देवा तो मिट्टी पानी की जांच करावा को मोटा मोटा फायदा यही है कि कौन से फसल आपा खेत में उगास का जकी चौकी रहे अपनी मिट्टी और पानी के अनुसार कौन सा पोषक तत्वों की फसल में कमी है इको भी बेरो बीसवीं पड़े तो आपा जब आपनी जब रिपोर्ट आ जाएगी मिट्टी पानी की तो सिफारिश के अनुसार ही आप सिंचाई करा खाद और उर्वरक देवा तो अच्छी फसल उत्पादन हुआ है
0: बिल्कुल और देखो एक साथ ही आपने जो फल ध्यान लगावा तो बाका भी आप गड्ढा तैयार करवा को सब बढ़िया टाइम है तो बिन गड्ढा खोद के बन खुला छोड़ देना चाहिए
1: हाँ बिल्कुल तो गर्मी में यो भी फायदा है बार यो तैयारी कर सका अब देखो अपनी तो बातचीत हुई पर अगर आप जानकारी की बात करा तो जैविक कीटनाशक को प्रयोग इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राम किशोर मीणा तो किसान भाई ने दिरावा जानकारी
0: तो मीणा ने जानकारी
2: कार्यक्रम में आज पधारिया हैं डॉक्टर राम किशोर मीणा जो कि प्रोफेसर हैं कीट विज्ञान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से जहाँ से आज आप बातचीत करवा जा रहे हैं जैविक कीटनाशी तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आप घनो घनो स्वागत राम राम सा जैसे कि आज आप बातचीत करवा जा रहे हैं जैविक कीटनाशी के बारे में तो आप यह बताओ सा कि जैविक कीटनाशी काई होवे हैं
3: किसान भाइयों बहुत बहुत राम राम जैविक कीटनाशी एक सुरक्षित तरीका है पर्यावरण में कीटों को नियंत्रण करने का जैविक कीटनाशक पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना कीटों को नियंत्रित करने के लिए उच्चतम उत्पाद हैं जैसे नीम का तेल पायरेथ्रीन डायटमेशियस अर्थ लहसुन स्प्रे साबुन स्प्रे बीटी बेसिलस थ्रुंजेंसिस ब्यूरिया बेसियाना ट्राइकोडर्मा वर्टिसिलियम लेकानी पेसिलियोमाइसिस स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस ये जैविक उत्पाद जिनके द्वारा हम कीटों का नियंत्रण करते हैं जिसे पर्यावरण पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता मैं जैसे संक्षिप्त में बताऊं जैसे नीम का तेल का स्प्रे हम घरेलू जो बागवानी है उसमें कर सकते हैं दो चम्मच प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें उससे हमारे ये सफेद मक्की कैटरपिलर एफिड माहू चैपा बोलते हैं उसका रोकथाम कर सकते हैं लहसुन की कलियों का रस निकाल के भी प्रति लीटर पानी एक लीटर पानी के हिसाब से हम मिला के स्प्रे कर सकते हैं ये भी चैपा सफेद मक्खी की रोकथाम में काम आता है ऐसे ही साबुन का घोल एक चम्मच प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे करें उससे सफेद मक्खी एफिड इनको नियंत्रित कर सकते हैं नीम का तेल का स्प्रे इससे एफिड सफेद मक्खी स्पाइडर माइट इनको नियंत्रित किया जा सकता है डायम एटमेशियस अर्थ का उपयोग स्लग स्नेल्स और ये जो रेंगने वाले कीड़े हैं कैटरपिलर्स उनको नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है लाभदायक नेमेटोड भी एक जैविक उत्पाद में आते हैं जिनका लाभदायक नेमेटोड के साथ परजीवी मक्खियां उनका उपयोग भी जैविक कीटनाशकों के रूप में किया जाता है पायरेथ्रीन ये गुलदाउदी के फूलों से प्राप्त किया जाता है इसका उपयोग करने पर हम एफिड सफेद मक्खी स्पाइडर माइट को भी नियंत्रित कर सकते हैं उसी प्रकार स्पाइनोसेड ये भी एक मिट्टी जनित जीवाणु है उसके द्वारा थ्रिप्स कैटरपिलर चैपा इनको कंट्रोल किया जा सकता है बीटी बेसिलस थ्रुंजेंसिस एक तरह से बैक्टीरिया है जीवाणु विष है इससे कैटरपिलर और मच्छरों को नियंत्रित किया जा सकता है एनपीवी ये संक्षिप्त में ये जैविक कीटनाशियों के बारे में जानकारी है
2: बिल्कुल सही बात अगर आपन बात करा एनपीवी की तो एनपीवी काई होवे है और इनके द्वारा कीट नियंत्रण की प्रकार से आपन कर सके हैं
3: एनपीवी किसान भाइयों एक तरह से वायरस है वायरस विषाणु है इसके द्वारा हम कीटों में वायरस जनित रोग फैलाकर कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा एनपीवी से हेलीकॉप्टर

0: आर्मी जरा जो इसमें कॉटन में भी लगता है, कपास में सूंडी लगती है, टमाटर में लगता है, इनकी रोकथाम के लिए हम एनपीवी हेलिकोवर्पा आर्मी जरा अलग अलग कीट के हिसाब से ये एनपीवी ईजाद किए गए हैं और इसका 2700 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से ये 0.43% का आता है, इससे इसकी रोकथाम की जा सकती है। ऐसे ही टमाटर में फल वेदक जो हेलिकोवर्पा है उसकी रोकथाम के लिए 1500 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से एनपीवी का उपयोग किया जा सकता है जो कि 0.43% का बाजार में उपलब्ध है और इसमें कम से कम 1×10^9 पीओबी प्रति एमएल होना चाहिए। पोलीहेड्रल इसके जो विषाणु हैं वो ऑक्लूजन बॉडीज होनी चाहिए 1×10^9। किसान भाइयों, ऐसे ही अरहर की फली वेदक कीट है उसके लिए हम जो एनपीवी 2% का आता है उससे हेलिकोवर्पा अरहर में भी लगता है, उसकी रोकथाम के लिए 500 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से स्प्रे करें। ऐसे ही चने में फली वेदक है उसकी रोकथाम के लिए भी एनपीवी का प्रयोग हम कर सकते हैं, वही 500 लीटर पानी में 500 ml एनपीवी का घोल बना के छिड़काव करें। उसी प्रकार अरहर में फली छेदक, चना में फली छेदक, ये अलग अलग टाइप के स्ट्रेन है। जैसे मैं आपको स्ट्रेन के बारे में उदाहरण दे हूँ एनपीवी के, एनपीवी स्ट्रेन NBRI 88/21, स्ट्रेन IBH 17/268, स्ट्रेन BIL HV9, ऐसे डिफरेंट अलग अलग प्रकार के ये स्ट्रेन है, लेकिन ये स्ट्रेन हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा के ही बनाए गए हैं। कम से कम 10 प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग जगह से, अलग अलग अनुसंधान रिसर्च सेंटरों से ये तैयार किए गए हैं और इनके अलग अलग डोज। स्ट्रेन BIL HV9 है, इसका उपयोग अरहर में फली छेदक, चना में फली छेदक, टमाटर में फल वेदक, इनकी रोकथाम के लिए 250 से 500 ml प्रति हेक्टर की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे ही ये 2% में भी उपलब्ध होता है, 0.43% में भी उपलब्ध है और एनपीवी का उपयोग जो प्रमुख कीट है स्पोडोप्टेरा लिटुरा, जो एक तरह से इसको तंबाकू कैटरपिलर कहा जाता है, ये तो ये एनपीवी स्पोडोप्टेरा लिटुरा 0.5% में उपलब्ध है। इसका उपयोग तंबाकू की सूंडी को कंट्रोल करने के लिए 1500 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे ही 0.5% में हेलिकोवर्पा को कंट्रोल करने के लिए भी उपलब्ध है, चने में फली छेदक को कंट्रोल करने के लिए इसकी मात्रा मात्र 250 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से उपयोग करेंगे। ऐसे ही एनपीवी का जो 2% का उपलब्ध है एक तरह से बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड, ये चने में फली वेदक, उसके लिए 250 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से हम उपयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, अगर आपन बात करा बिवेरिया बेसियाना की, तो यो काई होवे है और इमा कीट नियंत्रण की प्रकार से आपन का जो कर्सा भाई बहन है वो कर सके हैं?
0: ये बिवेरिया बेसियाना बेसिकली एक तरह से फंगस है, फंजाई है, और जैसे फंगस से बहुत सारे रोग भी लगते हैं फसलों में, लेकिन ये लाभदायक फंगस है। ये लाभदायक फंगस कीटों में बीमारी पैदा करती है, तो कीट इससे नियंत्रित किए जा सकते। जैसे ये बाजार में उपलब्ध है 1.15% WP में, कपास में जो बॉलवर्म

0: लाभदायक फंगस है। ये लाभदायक फंगस कीटों में बीमारी पैदा करती है, तो कीट इससे नियंत्रित किए जा सकते। जैसे ये बाजार में उपलब्ध है 1.15% WP में, कपास में जो बॉलवर्म लगता है, सुंडी लगती है, उसको कंट्रोल करने के लिए 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे किया जा सकता है। धान में एक पत्ती मोड़क कीड़ा लगता है, उसको कंट्रोल करने के लिए 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये भी डिफरेंट अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है बाजार में। ICR RJP ने निकाला है, एक इसका स्ट्रेन नंबर है 5372, एक इसका स्ट्रेन है ICR रिसर्च कॉम्प्लेक्स ओमिया मेघालय से निकाला गया, एक स्ट्रेन है NAIMCC नंबर 03045। अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रेन है उनसे हम ये कपास के बॉलवर्म, धान का पत्ती मोड़क कीट और पत्ता गोभी फूल गोभी में जो डायमंड बैक मोथ लगता है, बहुत खतरनाक कीट है, उसके कंट्रोल के लिए 1.5 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे ही चना में फली वेदक जो कीट है उसके लिए 3 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से स्प्रे करेंगे, और ये जड़ों में ड्रेंचिंग करें तो उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही ब्यूरिया बेसियाना 1% में अवेलेबल है, भिंडी में फली छेदक और स्पॉटेड बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए 4.25 से 5 किलो प्रति हेक्टर की दर से इसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार चने के फली वेदक के लिए 3 किलो। किसान भाइयों, इसके अलावा ब्यूरिया बेसियाना का 5% में भी उपलब्ध है, 5% WP में उपलब्ध है, 5% SC में उपलब्ध है। WP का उपयोग पत्ता गोभी और फूल गोभी में डायमंड बैक मोथ के कंट्रोल के लिए 2 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से हम स्प्रे करेंगे। वैसे ही ब्यूरिया बेसियाना 5% सस्पेंडेड कंसंट्रेशन में उपलब्ध है, उसका उपयोग टमाटर में फल वेदक कीट के लिए 0.5 kg मतलब 0.5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से हम उपयोग करेंगे स्प्रे में। वैसे ही ब्यूरिया बेसियाना 1.15 WP में अवेलेबल है, ये चने के फली वेदक के लिए 2.5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से हम उपयोग करेंगे। किसान भाइयों, इस प्रकार पत्ता गोभी में डायमंड बैक मोथ, चना में फली वेदक, भिंडी में फल वेदक, ये जो कैटरपिलर हैं, जो सूंडी हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये ब्यूवेरिया बेसियाना का उपयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर आपने बात करा स्यूडोमोनास का, जैविक कीट नियंत्रण में किस प्रकार से कर्सा भाई बहन उपयोग कर सके हैं?
0: स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस एक तरह से बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जनित जीवाणु विष है जो नेमेटोड्स उनको कंट्रोल करने के काम में आता है। नेमेटोड्स की आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे टमाटर में रूट नोट नेमेटोड लगता है, बैंगन में रूट नोट नेमेटोड लगता है, गाजर में रूट नोट नेमेटोड लगता है, भिंडी में रूट नोट नेमेटोड लगता है। इसको 3 तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। बीज उपचार में उपयोग करें तो 20 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करें, और नर्सरी बेड में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। नर्सरी बेड में 50 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम नर्सरी बेड का ट्रीटमेंट करें। वैसे ही सोइल ट्रीटमेंट, पूरे खेत का ट्रीटमेंट बुआई से पहले या ट्रांसप्लांटिंग से पहले किया जाता है, इसके लिए 5 किलो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस प्रति हेक्टर की दर से हम उसे एनरिच करते हैं। हम उसे 5 टन गोबर की खाद में मिला के 15 दिन पहले ही उसको मिला के गीला करके रख लेते हैं, और फिर जब पौधरोपण करते हैं या बुआई करते हैं इन सब्जियों की, उससे पहले हम भूमि उपचार करते हैं, जिससे कि जो रूट नोट नेमेटोड है टमाटर बैंगन गाजर भिंडी, इसका रोकथाम किया जा सके। हाँ, किसान भाइयों, जो ट्राइकोडर्मा हार्जियनम और ट्राइकोडर्मा वायरेडी, ये मुख्य रूप से अलग अलग स्ट्रेन जैविक कीट नियंत्रण के रूप में उपयोग है, जैविक कीटनाशी के रूप में ये नेमेटोड्स को मुख्य रूप से कंट्रोल करने के लिए हैं। वो जैसे टमाटर बैंगन गाजर भिंडी में रूट नोट नेमेटोड, ट्राइकोडर्मा भी रूट नोट नेमेटोड के लिए कंट्रोल करने के काम में आता है। उससे बीज उपचार करें, बीज उपचार वही 20 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचारित करें, और नर्सरी बेड का ट्रीटमेंट करते हैं तो 50 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से नर्सरी बेड का उपचारित करें, और भूमि उपचार के लिए 50 किलो ट्राइकोडर्मा आर्जेनम या ट्राइकोडर्मा वायरिडी किसी एक से ये 5 टन गोबर की खाद में मिला के हम 15 दिन पहले उसे गीला करके रख देंगे, जिससे कि वो काफी ज्यादा हो जाए, मल्टीप्लाई हो सके, और उसके बाद में हम वो ऐसे पहले या पौधरोपण से पहले इसका उपयोग भूमि में मिलाकर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर आपने बात करा कीटनाशक की, तो कीटनाशक पौधा काई होवे है और वहां को

0: जैविक कीट नियंत्रण में उपयोग की प्रकार से आप कर सके हैं।
1: कीटनाशक पौधे, प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके कुछ पौधों का तो एक तरह से वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जिनका पता ही नहीं है कि वो पौधे किस किस काम आ सकते हैं। लेकिन जो कीटनाशकों के रूप में जो पौधे काम आ सकते हैं उनके बारे में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। जैसे नास्टोसियम पौधा है, उसके उपयोग माहू, चैपा, सफेद मक्खी आदि कीटों को वो दूर भगाता है। जैसे गेंदा है, निमेटोड्स को दूर करता है। गेंदे के अगर बीच बीच में हम सब्जियों में गेंदे की बुआई कर देते हैं, गेंदे के फूलों की, तो वो नेमेटोड्स निजात मिल सकती है, नेमेटोड्स को दूर भगाता है और लाभदायक कीटों को आकर्षित करता है, डबल फायदा है उसके। तुलसी है, तुलसी सफेद मक्खी मच्छरों को दूर भगाती है। ऐसे ही क्राइसेंथेमम, इससे पायरेथ्रिन मिलता है, क्राइसेंथेमम के फूलों से पायरेथ्रिन मिलता है और ये सफेद मक्खी, मच्छर, माइट, जैसिड, माहू, चैपाई कीटों को दूर भगाता है। डेरिसिलिप्टिका, इसे रोटिनोन मिलता है, वो सफेद मक्खी एफिड इनको दूर भगाता है। नीम के इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे उत्पाद अलग अलग नामों से बाजार में उपलब्ध हैं। बेसिकली नीम में अजाडिरेस्टिन तत्व होता है, वही अजाडिरेस्टिन काम करता है और ये अजाडिरेस्टिन सफेद मक्खी, कैटरपिलर, माइट, थ्रिप्स, प्लांट ओपर, दुनिया भर के कीट हैं सभी को, बीटल्स, सभी को ये कंट्रोल करने में काम आता है।
0: बिल्कुल सही बात है। अगर आप बात करें बीटी की, तो बीटी काई होवे है और वहाँ का कीटनाशी का रूप में उपयोग की प्रकार से आप कर सके हैं।
1: बीटी बेसिलस थ्रुंजेंसिस, ये बहुत ही अच्छा जैविक उत्पाद है। ये एक ऐसी जीवाणु है जो कीटों में इन्फेक्शन करके बीमारी पैदा करके कीटों को नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, बीटी में अलग अलग वेरिएंट आते हैं, जैसे बीटी बेसिलस थ्रुंजेंसिस गैलेरी, इसका उपयोग पत्ता गोभी, फूल गोभी में डायमंड बैक मोथ को कंट्रोल करने के लिए 1 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें। टमाटर में फल वेदक कीट लगता है, उसको कंट्रोल के लिए 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करें। भिंडी में फल वेदक को कंट्रोल करने के लिए 1 किलो बीटी गैलेरी का प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। मिर्च में फल वेदक कीट लगता है स्पोडोप्टेरा, उसकी रोकथाम के लिए 1.5 किलो से 2 किलो स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही कपास में बॉलवर्म सूंडी लगती है, हेलिकोवर्पा, उसके कंट्रोल के लिए 2 से 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर जो बीटी गैलेरी है उसका प्रयोग किया जा सकता है। धान में भी जो पत्ती मोड़क कीट लगता है उसके कंट्रोल के लिए 1 से 3 किलो, अगर कम है तो 1 किलो और अगर ज्यादा है पत्ती मोड़क कीट धान में तो 3 किलो तक इसका प्रयोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीटी में एक अलग वेरिएंट है जो सबसे नंबर वन है, वो क्रस्टा की वेरिएंट है। ये कपास, धान, चना, अरहर, सोयाबीन, तंबाकू, अरंडी, इसमें तमाम तरह की जो सूंडी है, कैटरपिलर है, उनको कंट्रोल करने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। और किसान भाइयों, ये अलग अलग टाइप में, सीरो टाइप पे, अलग अलग स्ट्रेंथ में ये बाजार में अवेलेबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे हूँ, जैसे बीटी बैसिलस थ्रुंजेंसिस वेरिएंट क्रस्टा की सीरो टाइप H43-3B स्ट्रेंथ Z52, ये 750 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका स्प्रे करें। और कपास में स्पोडोप्टेरा बॉलवर्म, धान में तना वेदक पत्ती मोड़क, चने में फली वेदक, अरहर में फली वेदक, सोयाबीन में स्पोडोप्टेरा हेलिकोवर्पा, स्पाइलोसोमा, सेमी लूपर, लीफ माइनर, तंबाकू में स्पोडोप्टेरा हेलिकोवर्पा, अरंडी में हेरी कैटरपिलर अकाया जनाटा, कीटों की रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही वासा। तो वासावा, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर राम किशोर मीणा जी। आपरो कीमती समय निकाल मा का कार्यक्रम में आया, कसे भाई बहनों को ताई इतनी बढ़िया जानकारी साझा करी, इनका ताई आपको घणो घणो धन्यवाद सा।
2: हाँ, तो महेश भाई जी बहुत ही अच्छी जानकारी ले रहा, जैविक कीटनाशी का प्रयोग डॉक्टर राम किशोर मीणा जी जानकारी दिया और आपन जानकारी दिया भूमिका जी परिता। तो देखो, आपको धन्यवाद तो अपन भी देवा, पर एक देवा छोटा सा लोकगीत के साथ।
3: बिल्कुल,
2: तो सुना
3: जरूर साहब।

0: राजू भाई।
1: हाँ जी।
0: गोविंद सिंह राठौड़ की आवाज में लोक रचना तो बहुत चौकी सुनाई आप, और सुनता सुनता बहुत ही आनंद आयो। अब देखो आप लोकगीत तो सुने पर घड़ी की सुई इशारो कर रही है कि भी खेती बाड़ी को टेम पूरा हो चाले।
1: बिल्कुल सा।
0: तो आप अगली बार फिर मिलेंगे। तो अब महेश भाई ने और
1: राजू भाई ने
0: दियो आज्ञा।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। एम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं 1942 ए लव स्टोरी फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में।

प्रीति शर्मा की दुल्हनिया, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। कुमार के लिखे बोल हैं, शाहरुख तोशी का संगीत।

मीठा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं के और सुनिधि चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है, संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

जीत फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के लिखे बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत।

जीत फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर रात्रि के 8:30 होने को है। अब से थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के पश्चात समाचार प्रसारित किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, फिर उर्दू में प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह पक्की की, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला जारी। एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला आर्यवीर दीवान ने अपने नाम किया, शिवेन अग्रवाल और अनिका दुबे उपविजेता रहीं। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता उत्साह के साथ तीसरे दिन भी जारी। और अहमदाबाद में आयोजित हुआ संडे ऑन साइकिल का 75वां संस्करण। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां पर कई आज पदक देखने को हमें मिले। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज वियतनाम के दानांग में एक स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान के ओजोदबेक खालिमवेव को 12-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 55 किलोग्राम वर्ग में नीरज पटेल ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में कजाकिस्तान के रोआन बेकिमोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। रोहित बुरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के आर्टिक बेव अलिम्बेक उलू को 9-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं महिलाओं की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वीटी ने 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में न्योग लिन डो से 7-5 से हारकर रजत पदक अपने नाम किया। 59 किलोग्राम वर्ग में नेहा संगवान ने फाइनल में उज्बेकिस्तान की लेलोखोन सोबी रिबॉक से 9-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। वहीं 55 किलोग्राम वर्ग में अहिल्या शिंदे ने कांस्य पदक जीता। आज कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण तो कई ने कांस्य और कईयों ने रजत पदक अपने नाम किया। अगर हम देखें इस प्रतियोगिता में, तो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए देश के लिए कई पदक अपने नाम किए। बचे हुए मुकाबलों में इन खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्रिकेट की ओर, जहां पर टॉप चार के टीम जो है प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। जहां आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 205 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई 9 विकेट पर 175 रन ही बना सकी। इस मुकाबले के परिणाम के बाद प्लेऑफ की चार टीमें फाइनल हो गई। आरसीबी 18 अंक और बेहतर रन रेट, अगर हम आरसीबी की बात कर लें तो टॉप पर आरसीबी पहुंची है, जिनका नेट रन रेट 0.783 है। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस ने क्वालिफाई किया, जिनका नेट रन रेट 0.695 है। वहीं तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी, जिनका नेट रन रेट 0.524 है। उन्होंने 9 मुकाबले जीते हैं और 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं राजस्थान ने 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में जगह बना ली है। और अगर हम आगे के मुकाबलों की भी बात कर ले, तो धर्मशाला में 26 मई को क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

0: और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। वहीं न्यू चंडीगढ़ में 27 मई को एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स मुकाबला करेंगे। वहीं कल एक और मुकाबला खेला गया था, हालांकि पंजाब किंग्स प्रतियोगिता से अब बाहर हो चुकी है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने आज अपना मुकाबला जीत लिया है, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन ने अगले साल के लिए कुछ उम्मीदें जगाई हैं। कल लखनऊ में हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। सुनते हैं कल के मैच का हाल।
1: कल हुए मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लखनऊ ने 16 के स्कोर पर अश्विन कुलकर्णी का विकेट गंवा दिया। निकोलस पूरन भी 2 रन बनाकर मार्को यांसन का शिकार बने। चौथे विकेट के लिए आयुष बड़ौनी और जॉश इंग्लिश ने 49 रन की साझेदारी की। आयुष ने 200 से अधिक स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 43 रन बनाए। कप्तान ऋषभ पंत और इंग्लिश ने मिलकर लखनऊ की पारी को संभाला। कप्तान ने 26 रन की सदी हुई पारी खेली। वहीं इंपैक्ट प्लेयर जॉश इंग्लिश ने 44 गेंद पर बेहतरीन 72 रन बनाए। अब्दुल समद ने भी 37 रन का अहम योगदान दिया। लखनऊ ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए। पंजाब की ओर से मार्को यांसन और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। अजमतुल्ला उमर जई और शशांक सिंह ने 1-1 विकेट हासिल किए। प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर ने साथ मिलकर 3rd विकेट के लिए 76 गेंदों में 140 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया। प्रभसिमरन 39 गेंदों में 69 रन की पारी खेलकर आउट हुए। वहीं अय्यर 51 गेंदों में 5 छक्कों और 11 चौकों के साथ 101 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी के बदौलत पंजाब ने 2 ओवर शेष रहते सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाकर जीत दर्ज की। लखनऊ की ओर से मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर ने 1 विकेट अपने नाम किया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि हमने खिलाड़ियों को अपना नेचुरल गेम खेलने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था।
2: Honestly speaking, we didn't say anything. We just kept it simple. Rather than having meetings, putting more pressure on the boys, I think you kind of get lost in the previous losses when you discuss a lot. It's important that you let them be. You know, their free flow of mind is required, especially in crucial games, and you don't want to make them overthink in pressure situation. And today, I literally told Ricky that, you know, let's not do any team meeting. Let's just head to the ground and do our rituals, which we've been doing consistently, and we could see the result.
1: करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस बीच कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भी अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 125 रन बना लिए। हालांकि इस मुकाबले का अब परिणाम से कोई भी प्लेऑफ में अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए ये खिलाड़ी और ये जो टीमें हैं उम्मीदें जगाएंगी। अब सीधे रुख करते हैं स्क्वाश की ओर। 33वें एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वाश चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला आर्यवीर दीवान ने अपने नाम किया। शिवेन अग्रवाल और अनिका दुबे उपविजेता रहीं। सुनते हैं इस प्रतियोगिता में अब तक भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन।
3: 33वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में आज लड़कों के अंडर 19 वर्ग में आर्यवीर दीवान ने खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। फाइनल में आर्यवीर ने कोरिया के ली जोंग हायुक को हराया। 3x4 सीड हासिल करने वाले आर्यवीर ने चीन के पंजुआ में आयोजित प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में मलेशिया के टॉप सीड निकलेश्वर नोगाना सुंदरम को 4 गेम में हराया। आर्यवीर ने पिछले साल अंडर 17 खिताब के लिए भी इसी मलेशियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में अनिका दुबे उप विजेता रही। अनिका दुबे को हार्लिन तान ने हराकर खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। वहीं लड़कों के इसी वर्ग में शिवेन अग्रवाल शानदार प्रदर्शन करते हुए उप विजेता रहे। फाइनल मुकाबले में शिवेन को नुमान खान से हार का सामना करना पड़ा। अंडर 13 वर्ग में लड़कों में अमारिया बजाज को भी फाइनल मुकाबले में हार मिली। खिताबी मुकाबले में उन्हें लियोंग सांग से हार का सामना करना पड़ा। भूपेंद्र सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये जो आर्यवीर दीवान और जो नई पौध है ये लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत का झंडा शान से लहरा रहे हैं। अब सीधे रुख करते हैं झारखंड के रांची की ओर, जहां पर सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर

0: एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज भी कई स्पर्धाएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन गुरिंदर सिंह वीर ने 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में नया कीर्तिमान स्थापित किया। मैच के बाद गुरिंदर वीर सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए।
1: लास्ट मिनट पे जो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाएगा वो जीतेगा, तो शायद मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाया और इसलिए मैं अच्छा भाग पाया और होपफुली आगे भी अच्छा करूंगा। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से चल रही थी, हार्ड ट्रेनिंग किया, बहुत चीजें जो मेरे में कमी थी उसको सुधारा। एंड्योरेंस की कमी थी, स्पीड एंड्योरेंस की कमी थी, हर चीज में फोकस किया, ब्लॉक स्टार्ट को इम्प्रूव किया, अपनी स्ट्रेंथ को और अच्छी स्ट्रेंथ बनाया। प्लानिंग यही अभी गो विद द फ्लो, मैं अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करूंगा, होपफुली भगवान ने चाहे तो कॉन्वर्सेशन गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा।
0: और अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी रांची संवाददाता महविश
2: जी।
0: महविश, झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन का प्रतियोगिता जारी है। आज महिलाओं के वर्ग में हरियाणा और पंजाब का दबदबा रहा, इस बारे में क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
2: जी बिल्कुल, आज भी स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर था। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में हरियाणा की रवीना ने अपनी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के हैमर थ्रो मुकाबले में पंजाब की मनप्रीत कौर ने शानदार थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है।
0: जी, ये प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ खेलों के लिए चयन ट्रायल भी है। पुरुष हाई जंप से देश के लिए क्या अच्छी खबरें नजर आ रही है इस प्रतियोगिता से?
2: जी आज तो हाई जंप में भारतीय एथलीटों ने कमाल कर दिया। सर्वेश अनिल कुसारे ने 2.28 मीटर की शानदार छलांग लगाई। उनके साथ ही आदर्श राम ने 2.22 मीटर की कूद लगाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए पदक की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी है।
0: अभी ट्रैक इवेंट की अगर हम बात कर ले तो आज हर्डल्स यानी बाधा दौड़ में किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी नजर रही थी?
2: आज ट्रैक पर जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। रिलायंस के तेजस अशोक सिलसे ने मात्र 13.5 सेकंड का समय निकालकर एक नया मीट रिकॉर्ड कायम किया और स्वर्ण पदक जीता। उनके ठीक पीछे क्रिस एम ने 13.52 सेकंड के बेहतरीन समय के साथ रजत पदक हासिल किया। इन दोनों धावकों के बीच की टक्कर आज के दिन का सबसे बड़ा रोमांच थी। एक बड़ा धमाका पुरुषों के पोल वॉल्ट में भी हुआ, जहां मध्य प्रदेश अकादमी के देव मीना ने 5.42 मीटर की रिकॉर्ड तोड़ छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं महिलाओं की 100 मीटर हर्डल रेस में नंदनी के प्रदर्शन पर मुख्य फोकस रहा। इन दोनों एथलीटों ने अपनी श्रेणी में सबसे बेहतरीन खेल दिखाया है आज।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद महवेश, आपने ये विस्तृत हमें जानकारी हमारे साथ साझा की। अब सीधे बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन पर। पेरिस में आज से फ्रेंच ओपन टेनिस का आगाज हो चुका है। प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जैसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। वहीं कार्लोस अल्काराज चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। भारत की ओर से यूकी भांबरी और एन श्रीराम बालाजी भारतीय दल का नेतृत्व करते नजर आएंगे। महिला वर्ग में करमन कौर थांडी ने क्वालिफाइंग ड्रॉ में हिस्सा लिया था, लेकिन उनका सफर पहले दौर में ही समाप्त हो गया। यूकी भांबरी ATP डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 तक पहुंचने वाले वे सक्रिय भारतीय खिलाड़ियों में से सबसे आगे हैं। वहीं श्रीराम बालाजी अपने अनुभव और मजबूत नेट गेम के कारण भारतीय डबल्स टीम के अहम स्तंभ माने जा रहे हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में भारत की मौजूदगी की अगर हम बात करें तो भले ही सीमित हो, लेकिन यूकी भांबरी की शानदार फॉर्म, श्रीराम बालाजी का अनुभव और जूनियर खिलाड़ियों का उत्साह भारतीय टेनिस प्रशंसकों को भविष्य के लिए नई उम्मीदें दे रहा है। आने वाले दिनों में पेरिस की क्ले कोर्ट पर करोड़ों भारतीय निगाहें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। हैम्बर्ग में इग्नासियो बुसे ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए हैम्बर्ग ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने दुनिया के 26वें नंबर के अमरीकी खिलाड़ी टॉमी पॉल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। उधर SM कृष्णा मेमोरियल ओपन में आदिल कल्याणपुर और मुकुंद शशिकुमार की जोड़ी ने कल बेंगलुरु में SM कृष्णा मेमोरियल ओपन 2026 में डबल्स को अपने नाम कर लिया है। सीधे बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट पर। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत चलाए जा रहे संडे ऑन साइकिल इवेंट के 75वें संस्करण का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। इसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर सांघवी, अभिनेता आयुष्मान खुराना और ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग शामिल हुए। मनसुख मांडविया ने इस कार्यक्रम के दौरान

देशवासियों को फिट रहने का संदेश भी दिया। अब सीधे ले चलते हैं आपको कोलकाता, जहां पर आईपीएल का अंतिम लीग मुकाबला जारी है, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल स्पोर्ट्स

0: स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्सकैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टी हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: इन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा

0: ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय से दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल की फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcir.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और

0: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 35 वर्षीय त्रिशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थत्तेहकालु नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: कागज कलम नहीं।

0: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
1: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित बिलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिमबेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामी

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: साथी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार नौशाद।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
2: रे बा प म म ग ग

16 साल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L.

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

0: न कह सका।
1: 24 मई सन 2000 को निमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुत करता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं, और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स। अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम।

प्रणित भारती के मुंबई केंद्र से FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 10 बजे जब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

प्रयास करते हैं लता मंगेशकर के गाय फिल्म स्वतंत्र के बेटी के इस गीत के साथ। शब्द लेखन सावन कुमार तक का है, संगीत वेदपाल वर्मा का।

आपने लता मंगेशकर को फिल्म स्वतन की बेटी में सुना। आइए सुनते हैं किशोर कुमार का गाया फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत। अनजान कालिका का यह गीत है संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा

चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गरिया।

अपनी फिल्म किनारा का ही गीत सुना। आइए सुनते हैं मुकेश का गाया फिल्म धरती का ही पुकार की का ये गीत। शब्द लेकर मजरा सुल्तानपुरी का है संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आपने धरती कहे पुकार के काये गीत सुना। आइए सुनते लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया फिल्म चलते चलते का ये गीत। अमित खन्ना का लिखा गीत है, संगीत बप्पी लहरी का।

आपने फिल्म चलते चलते का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर का गाया फिल्म अभिमान का ये गीत। शब्द लेकर मजरू सुल्तानपुरी का है संगीत एस डी बर्मन का।

जिन्हें आपने लता मंगेशकर और मनहर को फिल्म अभिमान में सुना। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जीने की राह का ये गीत। आनंद बख्शी का लिखा गीत है संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

आइए सुनते हैं गुलजार की रचना को फिल्म रुदाली से। गायक कलाकार और संगीतकार है भूपेन हजारिका।

आपने फिल्म रुदाली का यह गीत सुना। आइए सुनते हैं साहिल उद्यानवी की रचना को रवि के संगीत निर्देशन में फिल्म वक्त से। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले ने।

आपने मोहम्मद रफी को फिल्म कर्ज में सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश में अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति का गाया फिल्म बंटवारा का ये गीत।

भानु राधा पोटवाल और कविता कृष्णमूर्ति की गाय फिल्म बटवारा के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यही खत्म होता है। FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 11 बजने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पर प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रांतीय समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आप

0: पूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साधारण मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय रात के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज के प्रसारण समय समाप्त होती है। कल सुबह 5:51 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। शुभ रात्रि। जय हिंद।